0: उपस्थित गुरु जिसे हम देश है सवाल यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सजी यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो यहाँ जो सब्जा हुई वो हमेशा सब्ज है और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो खुदा करे कि न हम हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो खुदा करे कि मेरी ऐसे पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो।
1: इसके साथ ही आज की ये पुरवकार तकरीर इख्तिताम पजीर हुई।

0: कराची में क़ायदे आज़म मज़ार ते गार्ड जी तब्दीली जी तकरीब कोठाई वई।
1: कौम का

ये इबरत की बात है, बहुत बड़ी इबरत की। अमूमन हमें ये बात तसल्ली देती है कि हमारे वालिदैन बड़े नेक थे तो हम भी उनके पीछे जन्नत में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या पता चला, बाप अगर पैगंबर भी हो तो जब तक इंसान खुद कुछ ना करे अपने लिए, कुछ भी फायदा ना होगा। कोई किसी को बचा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। दूसरी अहम बात कि उस बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसे पीछे क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि वो काफिरों की सोहबत में रहता था, उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। ये आयत है ना 42, वला तकुम माल काफिरीन, काफिरों के साथ ना दो, काफिरों के साथ मत रहो। बेटा पैगंबर का था, खुद अगर काफिर न भी था लेकिन काफिरों से मोहब्बत रखता था, उन्हीं के साथ अंजाम हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी किसी पैगंबर की बीवी काफिर नहीं हुआ करती, किसी पैगंबर की बीवी काफिर नहीं हो सकती। लेकिन उसका भी कसूर क्या था कि अमल नहीं था और दिलचस्पियां शौहर के मिशन की बजाय काफिरों की सरगर्मियों से थी। उनके दरमियान उठना बैठना, मोहब्बतें, दोस्तियां, ताल्लुकात, तो सोहबत सालेह तरह सालेह कुनंद और सोहबत तालेह तरह तालेह कुनंद। नेक लोगों की सोहबत और मजलिस और नेकों से ताल्लुक तुम्हें नेक बना देता है, और बदकार लोगों के साथ उठना बैठना, बुरे लोगों की मजलिस इंसान का अंजाम बुरा करती है। और फिर वही हदीस जो पीछे आपने पढ़ी, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी और मजूसी बना देते हैं। जैसे बकरी का बच्चा सही सालिम पैदा होता है जिसके लोग कान कतर देते हैं। शेख सादी ने बहुत जबरदस्त अंदाज में इस वाक़े पे तबसरा किया कि पिसर नूह बाप बदा बनशिस्त खानदाने नबुवतश गुमशुद सगे असहाबे कहफ रोज चंद पे नेका गिरफ्त मर्दम शुद्ध। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बदों की सोहबत में रहा तो नबुव्वत के खानदान को गुम कर बैठा, उस पानी में गुम हो गया ना, और बाकी सारा खानदान समेत उसकी बीवी के सब पार हो गए। तो पिसर नूह बा बदा बनशिस्त, तो ये बुरे लोगों की मजलिस इख्तियार करने का नतीजा था, खानदान नबुव्वत भी उसको न बचा सका। इसके बरक्स वो कहते हैं सगे असहाबे कहफ, असहाबे कहफ का जो कुत्ता था, रोज चंद चंद दिन पे नेका गिरफ्त, उसने नेक लोगों की मजलिस इख्तियार की, उनकी रखवाली की, मर्दम शुर इंसानों के मर्तबे पे जा पहुंचा, क्योंकि जन्नत में असहाबे कहफ का कुत्ता भी जाएगा, उनकी रखवाली की थी ना, हिफाजत की थी। तो नेक लोगों की मजलिस इंसान को आला मकाम तक पहुंचा देती है। अगर इंसान के अपने अंदर कुछ भी गट्स ना हो, कोई भी खूबी ना हो, लेकिन यही खूबी बहुत बड़ी है कि उसकी मोहब्बत और दोस्ती और दिलचस्पी नेक लोगों के साथ है। इसीलिए वो हदीस में आता है ना कि अलमरओ मा मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ उठेगा जिससे वो मोहब्बत रखता होगा। नेक लोगों से मोहब्बत है तो उसका अंजाम खात्मा भी वैसा ही, और क्यामत के दिन उन्हीं की मजलिस और सोहबत में उठाया जाएगा। सूरत फुरकान में आता है वयौमा यअद्दु ज़ालिमु अला यदैही, क्यामत के दिन जालिम अपने दोनों हाथों पे काटेगा। वयकूलु, और कहेगा या लैतनी, ए काश के मैं, इत्तखस्तु मअर रसूल सबीला,
رسول کا راستہ اپنا۔

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सदर आसिफ अली जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा योम दिफा के मौके से पाक फौज के शहीदन के खराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी 6 सितंबर असाजे कौमी तारीख में यादगार मकाम रखे तो हि डी असा के गाजन ए शहीदन के अजीम कुर्बानी की याद दियारे तो हि डी असा के मौके फराहम करे तो असा पांजे अजीम सपूतन के खराज अकीदत पेश क्यों। अजीम सपूतन 1965 में दुश्मन के नापाक इरादन के नाकाम बनायो। 6 सितंबर वारो जज्बो ऑपरेशन बनियान मरसूस में बीहर निमाया थियो। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण है तो 6 सितंबर पाक फौज के बेमिसाल अजम ए कुर्बानी की याद दियारे तो कौम वतन गाजन ए शहीदन के खराजे तहसीन पेश कया तो पाकिस्तान अमन ए इस्तेहकाम लाए फाल किरदार अदा कंदो रहंदो।

0: योम दिफा के मौके से हथियारबंद फौज जो शहीदन के खिराज अकीदत ISPR पारा जारी कल बयान मूजिब फील्ड मार्शल सहदास मुनीर नेवल चीफ एयर चीफ पारा शहीदन के खिराज अकीदत पेश किया। हथियारबंद फौज के काजिन के बहादुरी साबित कदम रहने से सलाम पेश कजे तो 6 सेप्टेम्बर कौमी ताद जुरत बहादुरी अज़म की लाजवाल अलामत है। 6 सेप्टेम्बर 1975 से पाकिस्तानी कौम वतन के दिफा लाए मुतहदी दुश्मन जो मुकाबलो कयो। शहीदन जो लाजवाल कुर्बानियों ईंदड़ नस्ल लाए मशल रहा हैं। ISPR पारा जारी कल पधराई में चयो तो पाकिस्तान खिते में अमन खुशहाली इस्तेहकाम चाहे तो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दिन के भल जा खुश करे पर सिंध के कुर्बानी जो बकरो बनाण का पासो करे। सीनियर वजीर शर्जील मेमण ख्वाजा आसिफ के बयान से रद्द अमल में पंजाब संभली सिराकी सूबे के हक में ब भेरा ए सिंध संभली सिंध में सूबा ठाण खिलाफ 8 भेरा 18 मंजूर कर चुकी है।

कराची के इलाके डिफेंस में औरतन विच में जेड़े वाके जो एसएसपी कोरंगी के सस साली साले पुलिस अहलकार खिलाफ केस दाखिल। एसएसपी कोरंगी फिदा जावरी के रिश्तेदार औरतन एक औरत भाव के तशद जो निशानो बनायो। वाके बाद तशद निशानो बनज धुरते ही केस दाखिल करायो। एडिशनल आईजी कराची के हिदायतन का एसएसपी फिदा जावरी के माइटन खिलाफ दुरुक्षान थाने ते केस दाखिल कयो वयो।

वतन के अजीम सपूतन के बेटा पेश करने लाए मुख्तलिफ शहरन में रैलियों तकरीबों सखर मिठी कंदकोट सामारो तंगवाणी जोई ए बियन शहरन में रैलियों कढ़ी पाक फौज के शहीदन के भेटा पेश कई वही।

ऐं छठे में ज़ाल मुड़ुस जा ॿनीअ मां लाश हथ 28 वरनि जे रमेश ऐं 25 वरनि जे किशोरीअ जा लाश मिलिया। पुलिस जो चवणु आहे त लॻे थो ज़ाल मुड़ुसु आपघात कयो आहे। ज़ाल जो लाश ज़मीन ते पयल हो ऐं मुड़ुस जे वण में फाओ खाधल लाश मिलियो। वधीक जांच जारी आहे।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: ठम ठम ठम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

फरमाशा बदीन का मोती सुनारो तलाल का लिमो बाजी मास्टर नसलपुर शहर का किशन सेजानी साहब सिखात का फनकार फारूक सोलंगी बुधानी का हाशिम राशिद अयूब सोलंगी लिमो बाजी मास्टर जल्द चाहे दो चिंची।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: मजारे कायते गार जी तब्दीली जी पुरोकार तकरीब पाकिस्तान एयरफोर्स जे कैडेट जी मजारे कायते शानदार परेड गार जो जिम्मेवार संभाले वरतियों तकरीब के खिताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो ता पाक फिजाया हर दुखी घड़ी में कौम जे उम्मीदन ते हमेशा पूरो लथी आए फिजाई हदन जो दिफाई पाक फिजाया जे मजबूत हथन में आए हर दुखी घड़ी में पाक फिजाया पांजो खिदमतों पेश कयो आयन योम दिफा ते नंढन तोड़ी वडन शहरन में सेमिनार तकरीबू कोठाए रैलियों कढ़ी वतन जे दिफा लाए जान कुर्बान दींदड़ शहीदन गाजन के भेटा पेश कई पई वे सदर आसिफ अली जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा योम दिफा के मौके ते पाक फौज के शहीदन के खिराज अकीदत पेश सदर आसिफ अली जरदारी चयो त 6 सितंबर असाजे कौमी तारीख में यादगार मकाम रखे तो ही डी असाके गाजन ए शहीदन जे अजीम कुर्बानन जी याद दियारे तो ही डी असाके मौके फराम करे तो त असा पाजे अजीम सपूतन के खिराज अकीदत पेश कयो अजीम सपूतन 1965 में दुश्मन के नापाक इरादन के नाकाम बनायो 6 सितंबर वारो जज्बो ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बीहर निमाया थियो वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण है त 6 सितंबर पाक फौज के बेमिसाल अजम ए कुर्बानन की याद दियारे तो कौम तरफा गाजन ए शहीदन के खिराज तहसीन पेश कया तो पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम लाए फाल किरदार अदा कंदो रहंदो योम दिफा के मौके ते हथियारबंद फौज जो शहीदन के खिराज अकीदत पेश ISPR पारा जारी कयल बयान मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ ए एयर चीफ पारा शहीदन के खिराज अकीदत पेश कयो हथियारबंदन फौज के गाजन के बहादुरी ए साबित कदम रहण ते सलाम पेश कजे तो 6 सितंबर कौमी इताद जुरत बहादुरी अजम के लाजवाल अलामत आए 6 सितंबर 1965 ते पाकिस्तानी कौम वतन के दिफा लाए मुतहती दुश्मन के मुकाबलो कयो शहीदन जो लाजवाल कुर्बानी ईंदड़ नसल लाए मशल रहा आहिनि ISPR पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त पाकिस्तान खिते में अमुन खुशहाली ऐं इस्तेहकाम चाहे थो अमुन अमान जे गडि॒यल अज़म खे कमज़ोरी न सम्झो वञे पाकिस्तान ख़िलाफ़ कंहिं बि अग्रहीअ जो फौरी ऐं फैसलाइतो जवाब ॾिनो वेंदो KP जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई 21 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया ISPR मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दनि पाक अफ़गान सरहद खां दाख़िल थियण जी कोशिशि कई सिक्योरिटी फोर्सिस जी कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारिजी विया उत्तर वज़ीरिस्तान में हिकु ॿी कार्रवाई में पाक अफ़गान सरहद भरिसां सिक्योरिटी फोर्सिस जी मौसर कार्रवाईअ में 7 ख़ारजियुनि खे जनम भेड़ो कयो वियो कुआट ऐं डेरा इस्माइल खान ज़िलनि में ॿिनि मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि में 4 ख़ारजी मारिजी विया सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश सदर आसिफ अली ज़रदारीअ चयो त पाकिस्तान जे सरहदुनि जो दिफ़ा ऐं दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो पहिरीं तरजीह आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग में पूरी क़ौम सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु आहे वतन जे अज़ीम सपूतन खे भेटा पेश करण लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं तक़रीबूं सखर मिठी कंदकोट सामारो उबावड़ो टंडो आदम टंडो गुलाम हैदर तंगवाणी जोई ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढी पाक फ़ौज जे शहीदनि खे भेटा पेश कई वई नून लीग पंहिंजे इतिहादनि खे भलजा खुश करे पर सिंध खे क़ुर्बानीअ जो ॿकरो बणाइण खां पासो करे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ख्वाजा आसिफ जे बयान ते रदि अमल में चयो आहे त पंजाब असम्बली सिराइकी सूबे जे हक़ में 2 भेरा ऐं सिंध असम्बली सिंध में वधीक सूबा ठाहिण ख़िलाफ़ 8 भेरा ठहरा मंज़ूर करे चुकी आहे कराचीअ जे इलाइक़े डिफेंस में औरतुनि विच में जेड़े वाके जो SSP कोरंगीअ जे ससु साली साले ऐं पुलिस अहलकार ख़िलाफ़ केस दाख़िल SSP कोरंगी फिदा जावरीअ जे रिश्तेदार औरतुनि हिकु औरत ऐं भाउ खे तशद जो निशानो बणायो वाके बाद तशद जो निशानो बणजण धुर ते ई केस दाख़िल करायो एडिशनल IG कराचीअ जे हिदायतुनि खां पोइ SSP फिदा जावरीअ जे माइटनि ख़िलाफ़ दुरुख़शान थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो

आयल टैंकर्स के निशानो बनाने जी दावा ईरानी पासदारन इनकलाब जी बहरिया दावा कई है तो आबनाउरंस में गुजरण से टिन अमरीकी आयल टैंकर्स ए टिन बहरी जहाजन के निशानो बनाया।

0: ऐं छटे में ज़ाल मुड़ुस जा ॿनीअ मां लाश हथ 28 वरनि जे रमेश ऐं 25 वरनि जे किशोर जा लाश मिलिया। पुलिस जो चवण आहे त लॻे थो त ज़ाल मुड़ुस आपघात कयो आहे। ज़ाल जो लाश ज़मीन ते पयल ऐं मुड़ुस जो वण में फाओ खधल लाश मिलियो। वधीक जांच जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: स्किन केयर के लिए दुनिया भर में ख़वातीन का अव्वलीन इंतखाब फाइज़ा ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल अज्ज़ा आपकी स्किन को रखे हेल्थी, खूबसूरत और जवान। फाइज़ा ब्यूटी क्रीम।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

का फर्क था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके तमसे रोंग के शहरों में जा बसे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप
1: सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा यौम दिफा के मौके से पाक फौज के शहीदन के खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी है 6 सेप्टेम्बर असाजे कौमी तारीख में यादगार मकाम रखे तो ही डी असा के गाजिन शहीदन की अजीम कुर्बानी की याद दियारे तो ही डी असा के मौको फराहम करे तो असा पांजे अजीम सपूतन के खिराज अकीदत पेश क्यों। अजीम सपूतन 1958 में दुश्मन के नापाक इरादन के नाकाम बनायो। 6 सेप्टेम्बर वारो जज्बो ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बीहर निमाया थो। वजीर आजम शहबाज शरीफ चवण है 6 सेप्टेम्बर पाक फौज के बेमिसाल अजम ए कुर्बानी की याद दियारे तो कौम तरफा गाजन शहीदन के खिराज तहसीन पेश क्या तो पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम लाए फाल किरदार अदा कंदो रहंदो। यौम दिफा के मौके से हथियारबंद फौज जो शहीदन के खिराज अकीदत। ISPR पारा जारी कल बयान मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ एयर चीफ पारा शहीदन के खिराज अकीदत पेश वो। हथियारबंदन फौज के गाजिन के बहादुरी साबित कदम रहने से सलाम पेश कजे तो 6 सेप्टेम्बर कौमी इताद जुरत बहादुरी अजम की लाजवाल अलामत है। 6 सेप्टेम्बर 1958 ते पाकिस्तानी कौम वतन के दिफा लाए मुतहती दुश्मन के मुकाबलो कयो। शहीदन जो लाजवाल कुर्बानी ईंदड़ नसल लाए मशल रहा है। ISPR पारा जारी कल पधराई में वो है पाकिस्तान खिते में अमन खुशहाली इस्तेहकाम चाहे तो अमुन अमान के गड़ियल अजम के कमजोरी न समझो वे पाकिस्तान खिलाफ कें भी अग्रही जो फौरी फैसलाए तो जवाब दिनों वो। केपी के मुख्तलिफ इलाक में सिक्योरिटी फोर्सिस की कार्रवाई 21 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। ISPR मूजिब उत्तर वजीरिस्तान में दहशतगर्दन पाक अफगान सरहद का दाखिल थियण की कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सिस की कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारजी वया। उत्तर वजीरिस्तान में एक बी कार्रवाई में पाक अफगान सरहद भरसा सिक्योरिटी फोर्स के मौसर कार्रवाई में 7 खारजन के जनम भेड़ो वो। कुआट ए डेरा इस्माइल खान जिले में बिन मुख्तलिफ कार्रवाई में 4 खारजी मारजी वया। सदर ए वजीर आजम पारा कामयाब कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सिस के भेटा पेश। सदर आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सरहदों को दिफा ए दहशतगर्दी का खात्मा पेरी तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्स से गड है। वतन के अजीम सपूतन के भेटा पेश करण लाए मुख्तलिफ शहर में रैलियों ए तकरीबू। सखर मिठी कंदकोट सामारो उबावड़ो टंडो आदम टंडो गुलाम हैदर तंगवाणी जोई ए बियन शहर में रैलियों कढ़ी पाक फौज के शहीदन के भेटा पेश कई वही। नून लीग पांजे तादन के भलजा खुश करे पर सिंध के कुर्बानी जो बकरो बनाने का पासो करे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ख्वाजा आसब के बयान ते रदे अमल में चयो आए त पंजाब असेंबली सिराकी सूबे के हक में 2 भेरा ए सिंध असेंबली सिंध में वधिक सूबा ठाने खिलाफ 8 भेरा ठहरा मंजूर कर चुकी है। घोटकी भरसा कार कल्टी थियण सबब 4 जणा फोत। बायपास ते टायर बरस थियण सबब कार कल्टी थियण जे नतीजे में औरत समेत 4 जणा हयाती विञाए वेठा। फोतिन जी सुञाणप नथी सघी मड़ अस्पताल मुंतकिल।

0: मां लाश हथ 28 वरनि जे रमेश ऐं 25 वरनि जे किश्वरी जा लाश मिलिया। पुलिस जो चवणु आहे लॻे थो त ज़ाल मुड़ुस आपघात कयो आहे। ज़ाल जो लाश ज़मीन ते पयल हो ऐं मुड़ुस जो वण में फाउ खाधल लाश मिलियो। वधीक जाच जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वतन के अजीम सपूतन के सलाम सिंध समेत सजे मुल्क में अज एक योम दिफा योम शोदा मल्हाए पियो वञे मज़ार काय ते गार्ड जी तब्दीली जी पुरवकार तकरीब पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट जी मज़ार काय ते शानदार परेड गार्ड जूं ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं तकरीब के खिताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो त पाक फिज़ाया हर ॾुखी घड़ीअ में क़ौम जी उमेदुनि ते हमेशह पूरो लथी आहे फिज़ाई हदुनि जो दिफ़ा पाक फिज़ाया जे मज़बूत हथनि में आहे हर ॾुखी घड़ीअ में पाक फिज़ाया पंहिंजूं ख़िदमतूं पेश कयूं आहिनि योम दिफ़ा ते नंढनि तोड़ी वॾनि शहरनि में सेमिनार तकरीबूं कोठाए ऐं रैलियूं कढी वतन जे दिफ़ा लाइ जान क़ुर्बान ॾींदड़ शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे भेटा पेश कई पई वञे सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां योम दिफ़ा जे मौक़े ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश सदर आसिफ ज़रदारीअ चयो आहे त 6 सेप्टेम्बर असांजे क़ौमी तारीख़ में यादगार मक़ाम रखे थो हीउ ॾींहुं असांखे गाज़ियुनि ऐं शहीदनि जी अज़ीम क़ुर्बानी जी यादि ॾियारे थो हीउ ॾींहुं असांखे मौक़ो फ़राहम करे थो त असां पंहिंजे अज़ीम सपूतनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयूं अज़ीम सपूतनि 1965 में दुश्मन जे नापाक इरादनि खे नाकाम बणायो 6 सेप्टेम्बर वारो जज़्बो ऑपरेशन बुनियान मरसूस में ॿीहर निमाया थियो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जे बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानी जी यादि ॾियारे थो क़ौम तर्फ़ां गाज़ियुनि ऐं शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो पाकिस्तान अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ फ़ाल किरदारु अदा कंदो रहंदो योम दिफ़ा जे मौक़े ते हथियारबंद फ़ौज जो शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश ISPR पारां जारी कयल बयान मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ़ ऐं एयर चीफ पारां शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयो वियो हथियारबंद फ़ौज जे गाज़ियुनि खे बहादुरी ऐं साबित क़दम रहण ते सलाम पेश कजे थो 6 सेप्टेम्बर क़ौमी इताद जुरत बहादुरी ऐं अज़म जे लाज़वाल अलामत आहे 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी क़ौम वतन जे दिफ़ा लाइ मुतहती दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसुल लाइ मशल राह आहिनि ISPR पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो त पाकिस्तान ख़िते में अमुन खुशहाली ऐं इस्तक़ाम चाहे थो अमुन अमान जे गॾियल अज़म खे कमज़ोरी न सम्झो वञे पाकिस्तान ख़िलाफ़ु कंहिं बि अग्रहीअ जो फौरी ऐं फ़ैसिलाइतो जवाबु ॾियणो पवंदो KPA जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई 21 दहशतगर्द मारिजी विया ISPR मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दनि पाक अफ़गान सरहद खां दाख़िल थियण जी कोशिशि कई सिक्योरिटी फोर्सिस जी कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारिजी विया उत्तर वज़ीरिस्तान में हिक ॿी कार्रवाई में पाक अफ़गान सरहद भरिसां सिक्योरिटी फोर्स जी मौसर कार्रवाई में 7 ख़ारिजनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो कोहाट ऐं डेरा इस्माइल खान ज़िलनि में ॿिनि मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि में 4 दहशतगर्द मारिजी विया सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पाकिस्तान जी सरहदुनि जो दिफ़ा ऐं दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो पहिरीं तरजीह आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ु जंग में पूरी क़ौम सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु आहे

नून लीग पंहिंजे इतिहादनि खे भलजां खुश करे पर सिंध खे कुर्बानीअ जो बकरो बणाइण खां पासो करे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण ख्वाजा आसिफ जे बयान ते रद अमल में चयो आहे त पंजाब असम्बली सिराइकी सूबे जे हक़ में ॿ भेरा ऐं सिंध असम्बली सिंध में वधीक सूबा ठाहिण ख़िलाफ़ अठ भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। वतन जे अज़ीम सपूतन खे भेटा पेश करण लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं तक़रीबूं। हैदराबाद, सखर, मिठी, कंदकोट, सामारो, बावरो, रोहिड़ी, टंडो आदम, टंडो गुलाम हैदर, तंगवाणी, जोई ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढी पाक फ़ौज जे शहीदनि खे भेटा पेश कई वई। घोटकी भरिसां कार कल्टी थियण सबबि चारि ॼणा फोत। बाईपास ते टायर बरस थियण सबबि कार कल्टी थियण जे नतीजे में औरत समेत चारि ॼणा हयाती विञाए वेठा। फोतियुनि जी सुञाणप न थी सघी, मड़ इस्पताल मुंतकिल। कराचीअ जे इलाइक़े लियाकताबाद में सिलेंडर जे दुकान में फायरिंग, हिकु ॼणो मारिजी वियो। सुर्या मार्केट भरिसां फायरिंग में 28 वरनि जो शिराज मारिजी वियो, मर्स इस्पताल मुंतकिल। कराचीअ जे इलाइक़े डिफेंस में औरतुनि विच में जहिड़े वाके जो SSP कोरंगीअ जे ससु साली साले ऐं पुलिस अहलकार ख़िलाफ़ केस दाख़िल। SSP कोरंगी फिदा जांवरीअ जे रिश्तेदार औरतुनि हिकु औरत ऐं भाउ ते तशद जो निशानो बणायो। वाके बाद तशद जो निशानो बणजण धुर ते ई केस दाख़िल करायो वियो। एडिशनल IG कराचीअ जे हिदायतुनि खां पोइ SSP फिदा जांवरीअ जे माइटनि ख़िलाफ़ दुरुक्षान थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो।

लखी गुलाम शाह भरसाण सुञातल शख्स जो लाश हथ खीरथर केनाल जे रुक रेगुलेटर मां अणॼातल शख्स जो लाश मिलियो। पुलिस पहुची लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो।

ट्रिन ऑयल टैंकर्स खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरानी पासदारनि इनकलाब जी बहिरियां दावा कई आहे त आबनाए उरुस मां गुज़रण ते टिन अमरीकी ऑयल टैंकर्स ऐं टिन बहिरी जहाज़नि खे निशानो बणायो वियो।

0: सोलर है बैटरी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वतन के अजीम सपूतन के सलाम सिंध समेत समूरे मुल्क में अज एक योम दिफा योम शोदा मल्हायो पियो वञे नंढन तोड़ी वॾनि शहरनि में सेमिनार तकरीबूं कोठाए ऐं रैलियूं कढी वयूं वतन जे दिफ़ा लाइ जान कुर्बान ॾींदड़ शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे भेटा पेश कई वई सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां योम दिफ़ा जे मौक़े ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश सदर आसिफ अली ज़रदारीअ चयो आहे त 6 सेप्टेम्बर असांजे क़ौमी तारीख़ में यादगार मक़ाम रखे थो हीउ ॾींहुं असांखे गाज़ियुनि ऐं शहीदनि जी अज़ीम क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारे थो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जे बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारे थो क़ौम तर्फ़ां गाज़ियुनि ऐं शहीदनि खे ख़राज तहसीन पेश कयां थो पाकिस्तान अमुन ऐं इस्तहकाम लाइ फ़ाल किरदार अदा कंदो रहंदो बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त वतन लाइ जान ॾींदड़ वतन जे बहादुर सिपाहियुनि खे क़ौम कॾहिं बि विसारे न सघंदी योम दिफ़ा ते मज़ार काए ते गार्ड जी तब्दीलीअ जी तकबीर पाकिस्तान एयरफोर्स जे कैडेट जी मज़ार काए ते शानदार परेड गार्ड जूं ज़िमेवारियूं संभाले वरितियूं तकरीब खे ख़िताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो त पाक फिज़ाया हर ॾुखी घड़ीअ में क़ौम जे उमेदनि ते हमेशह पूरो लथी आहे फिज़ाई हदुनि जो दिफ़ा पाक फिज़ाया जे मज़बूत हथनि में आहे हर ॾुखी घड़ीअ में पाक फिज़ाया पंहिंजूं ख़िदमतूं पेश कयूं आहिनि योम दिफ़ा जे मौक़े ते हथियारबंद फ़ौज जो शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत ISPR पारां जारी कयल बयान मूजिबि फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर नेवल चीफ ऐं एयर चीफ पारां शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयो वियो हथियारबंदनि फ़ौज जे गाज़ियुनि खे बहादुरी ऐं साबित क़दम रहण ते सलाम पेश कजे थो 6 सेप्टेम्बर क़ौमी ताज जुरत बहादुरी अज़म जे लाज़वाल अलामत आहे 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी क़ौम वतन जे दिफ़ा लाइ मुतहती दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसुल लाइ मशल रहा आहिनि ISPR पारां जारी कयल पधराईअ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान ख़िते में अमुन ख़ुशहाली ऐं इस्तहकाम चाहे थो अमुन अमान जे गॾियल अज़म खे कमज़ोरी न सम्झो वञे पाकिस्तान ख़िलाफ़ कंहिं बि अगराईअ जो फौरी ऐं फैसलाइतो जवाबु ॾिनो वेंदो नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ऐं मिस्र जे परॾेही वज़ीर विच में टेलीफोनिक राब्तो बेतरफ़ी सहकार इलाक़ाई ऐं अलामती ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई ॿिन्ही अॻुवाणनि पारां ॿिन्ही तरफ़नि खां लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण जे अज़म जो वर्जा क़ौम FBR जे बदउनवान आफ़ीसरनि खे पाले रही आहे हुकूमत पंहिंजी नाक़िस हुकमरानी लिकाइण लाइ अवाम ते ॿार विझे थी जमायत इस्लामीअ जे सरबराह हाफिज़ नईम जी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल हाफिज़ नईम चयो त अवाम जे पैसनि सां रुॻो कुझु माण्हुनि जो पेट भरियो पियो वञे IPPs खे बिजलीअ जा पैसा ॾिना पिया वञनि जेका ठहे ई नथी शहबाज़ हुकूमत 4,000 अरब खां वधीक लेवी वसूलु करे चुकी आहे

तादिन खे भलजा खुश करे पर सिंध खे कुर्बानी जो बकरो बनाइण खां पासो करे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण ख्वाजा आसिफ़ जे बयान ते रद अमल में चयो आहे त पंजाब असम्बली सिराइकी सूबे जे हक़ में ॿ भेरा ऐं सिंध असम्बली सिंध में वधीक सूबा ठाहिण ख़िलाफ़ 8 भेरा ठहराउ मंज़ूरु करे चुकी आहे। वतन जे अज़ीम सपूतनि खे भेटा पेश करण लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं तक़रीबूं। हैदराबाद, सखर, मिठी, कंदकोट, सामारो, उबावड़ो, रोहिड़ी, टंडरो आदम, टंडरो ग़ुलाम हैदर, तंगवाणी, जोई ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढी पाक फ़ौज जे शहीदनि खे भेटा पेश कई वई। लखी ग़ुलाम शाह भरसा अण सुञातल शख़्स जो लाश हथ खीरथर केनाल जे रुख रेग्युलेटर मां अणॼातल शख़्स जो लाश मिलियो। पुलिस पहुची लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा. रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का.
1: ये गाज़ी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदा. दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राय. है मेरे वतन के मुहाफिज ये बंदे, शुजात की तारीख इन्होंने बनाई. उदू के लिए मौत बनकर ये निकले, ये दीवार है एक सीसा बिलाई. शहादत है मतलूब व मकसूद मो, न माले गनीमत न किश्वर कुशाए. दिफाए वतन को नाकाबले तस्वीर बनाने वाले अफवाज पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों को पूरी कौम का सलाम.
2: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजर ब्यूटी क्रीम.
3: थम थम थम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

मुखालफ़त कंदा रहंदासीं। राशिद ममून सुमरे चयो आहे त सिंध असांजी धरती आहे, उन जो फैसलो करण जो अख़्तियार सिर्फ़ सिंधियुनि वटि आहे। उमर को संदसि वधीक चवण आहे त उमरकोट में केपीअ जे वॾे वॾे सुहेल आफ़रीदीअ सां मुलाक़ात थी आहे ऐं संदसि खे घर अचण जी दावत बि ॾिनी आहे। राशिद ममून सुमरे वधीक चयो आहे त असेंबली में वॾियूं तकीरूं कंदड़नि खे चवां थो त पहिरियां यूनियन काउंसिल ॾांहुं ॾिसनि। सिंध खे विरहाइण वारी कंहिं बि साज़ जी सख़्त मुखालफ़त कंदा रहंदासीं। मौलाना राशिद ममून सुमरे वधीक चयो आहे त सिंध असांजी धरती आहे ऐं उन जो फ़ैसिलो करण जो अख़्तियार सिर्फ़ सिंध जे अवाम खे आहे। फारम 47 ज़रिए असेंबलियुनि में अचण वारे अमल खे असां कंहिं बि सूरत में क़बूल नथा करियूं। PTI सां असांजो पार्लियामेंट अंदरि इतिहाद थियो आहे ऐं इहो इतिहाद अॻिते बि हली रहियो आहे। उमरकोट में अची KP जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदीअ सां मुलाक़ात कई ऐं घर अचण जी दावत बि ॾिनी आहे। असेंबली में वॾियूं तकीरूं कंदड़नि खे चवां थो त पहिरियां यूनियन काउंसिल ॾांहुं ॾिसनि।

ठटे खां ख़बर शामिल कंदा हलां त अवामी तहरीक़ ऐं सिंधियाणी तहरीक़ जी मकलीअ खां ठटे ताईं सुजाॻी मुहिम रैली नूर अहमद कातियार जी अॻवाणीअ में रैलीअ में नियाणियूं ऐं मासूम ॿारा बि शामिल आहिनि। सिंध जे हक़ में नारेबाज़ी वफ़ाक़ी वज़ीर सिंध ख़िलाफ़ साज़िश में रुधल आहिनि मुसलसल ज़हर उगाछे रहिया आहिनि। अॻवाणनि वधीक चयो त सिंध जे वसीलनि जी फुरलट करे सिंधु दरिया ते धाड़ो हयो पियो वञे। ठटे खां अपडेट कंदा हलूं त अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जी मकलीअ खां ठटे ताईं सुजाॻी मुहिम रैली कढी वई आहे। रैलीअ जी अॻवाणी नूर अहमद कातियार कई आहे। रैलीअ में नियाणियूं ऐं मासूम ॿारा वॾे अंग में शामिल आहिनि। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जे हक़ में सख़्त नारेबाज़ी कई वई आहे। वफ़ाकी वज़ीर सिंध ख़िलाफ़ साज़िश में रुधल आहिनि जेके मुसलसल ज़हर उगाछी रहिया आहिनि। सदन वधीक चवण आहे त सिंध जे वसीलनि जी फुरलट करे सिंधु दरिया ते धाड़ो हयो पियो वञे। ठटे खां अपडेट कंदा हलूं त अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जी मकलीअ खां ठटे ताईं सुजाॻी मुहिम रैली कढी वई आहे। रैलीअ जी अॻवाणी नूर अहमद कातियार कई आहे। रैलीअ में नियाणियूं ऐं मासूम ॿारा वॾे अंग में शामिल आहिनि। सिंध जे हक़ में नारेबाज़ी वफ़ाकी वज़ीर सिंध ख़िलाफ़ साज़िश में रुधल आहिनि। मुसलसल ही ज़हर उगाछे रहिया आहिनि। सदन वधीक चवण आहे त सिंध जे वसीलनि जी फुरलट करे सिंधु दरिया ते धाड़ो हयो पियो वञे। ठटे खां अपडेट कंदा हलूं त अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जी मकली खां ठटे ताईं सुजाॻी मुहिम रैली कढी वई आहे। नूर अहमद कातियार जी अॻवाणीअ में रैली कढी वई आहे। रैलीअ में नियाणियूं ऐं मासूम ॿारा वॾे अंग में शामिल आहिनि। सिंध जे हक़ में नारेबाज़ी कई वई आहे। अॻवाणनि चयो आहे त वफ़ाकी वज़ीर सिंध ख़िलाफ़ साज़िश में रुधल आहिनि मुसलसल ज़हर उगाछे रहिया आहिनि। सदन वधीक चवण आहे त सिंध जे वसीलनि जी फुरलुट करे सिंधु दरिया ते धाड़ो हयो पियो वञे।

ठटे खां अपडेट कंदा हलूं तव्हां में तारीख़ ऐं सिंधियाणी तारीख़ जी मकले खां ठटे ताईं सुजाॻी मम रैली कढी वई आहे। नूर अहमद कातियार जी अॻवाणीअ में रैली वॾे अंग में नियाणियूं ऐं मासूम ॿार शामिल आहिनि। सिंध जे हक़ में नारेबाज़ी कई वई आहे। कुनरी खां अपडेट कंदा हलूं त ॻोठ बाबू ख़ासि किले में नौजवान मुबैना तौर ज़हरीली दवा पी आपघात करे छॾियो आहे। 25 वरियन जे 17 मलद सोनो कुली आपघात कयो आहे। कुनरी खां अपडेट कंदा हलूं त ॻोठ बाबू ख़ासि किले में नौजवान मुबैना तौर ज़हरीली दवा पी खुदकशी करे छॾी आहे। वारसनि मूजिबि 25 वरियन जे 17 मलद सोनो कुली आपघात कयो आहे।

0: कुंडरीक अपडेट कंदा हलां त ॻोठ बाबू ख़ासि कली में नौजवान मुबैना तौरु ज़हरीली दवा पी आपघात करे छॾी आहे। वारसनि मूजिबि पंजवीहनि वरियनि जे सतराम वलद सोनो कुली आपघात कयो आहे। नाज़रीन भान सैदाबाद में 6 महीननि खां रेलवे सर्विस मुअत्तल आहे, जंहिंजे करे रहवासी परेशान आहिनि। वधीक तफ़सील ॾिसूं था हिन रिपोर्ट में।
1: जी नाज़रीन, असीं हींअर बांसदाबाद शहर जे रेलवे स्टेशन ते मौजूदु आहियूं, जिते वफ़ाक पारां तेल में खोट ॼाण आहे। जेको हिते हलंदड़ ट्रेनूं सभु बंदि करे छॾियूं आहिनि, स्टेशन वीरान लॻी पई आहे। अचो त हिते मुसाफ़िरनि सां ॻाल्हि ॿोल कई, वधीक छा था।
2: हे जेका बांसदाबाद रेलवे स्टेशन आहे, सीएम सिंध सैद मुराद अली शाह जे तक जी हे शहर आहे, उनजी स्टेशन आहे। हिते का बुनियादी सहूलियत कोन्हे, न फ़क़ति रेल जे हलण सां गॾोगॾु, पर हिते का बि जेका आहे बुनियादी सहूलियत, न पीअण जो पाणी आहे, न वेहण जो को बंदोबस्त आहे, न वॉशरूम आहे लेडीज़ ऐं जेंट्स जो, का बि सहूलियत हिते कान्हे। असां वक़्त जे हाकमन खां इहा पुरज़ोर मुतालबो कयूं था त जीअं ML1 ते ट्रेन सर्विस हले थी, हिकु मुल्क ॿ कानून इहो मुमकिन ई कोन्हे। साईं,
3: ऐं मुंहिंजा हे पाकिस्तान रेलवे जो ॿियो नंबर वॾे में वॾो ट्रेक आहे, ML2 अटक खां कोटली ताईं 1,250 किलोमीटरनि जो हुजे थो, सिंध मां बि गुज़रे थो, ऐं सिंध में सिंधु दरिया जे साॼे पासे सिंध जा 6 ज़िला कश्मोर, जकमबाद, शिकारपुर, लाड़काणो, दादू ऐं जामशोर जे किरोड़े सिंध वासियुनि खे सफ़री सहूलियत मुहैया करे थो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे शहादत खां अॻु हिन ट्रेक ते 10 खां 12 ट्रेनूं अप डाउन कंदियूं हुयूं। मोहतरमा जैनी शहीद थी उन ॾींहं खां अॼु ॾींहं ताईं 19 सालनि जो जेको पीरियड गुज़रियो आहे, इन में रेलवे हेडक्वार्टर सब जे बुनियाद ते सिंध वासियुनि जे हिन ट्रेक खे 5 दफ़ा बंदि कयो आहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत वारे ॾींहुं ही ट्रेक बंदि थियो, ऐं उन खां पोइ 2010 वारी ॿोॾ बरसाति में ही ट्रेक बंदि थियो। वरी कोविड बीमारी वारे वक़्त ही ट्रेक बंदि थियो। 2022 वारे ॿोॾ जे बहाने सां ही ट्रेक बंदि थियो, ऐं हाणे अमेरिका इसराइल ईरान जी जंग ऐं तेल जा अघ वधण जे बहाने सां ही 5 भेरो असांजो ही ट्रेक बंदि थियो आहे।
4: गवर्नमेंट खां वफ़ाकी हुकूमत खां मुतालबो था कयूं त ML2 जेको आहे अटक खां वठी कराची ताईं फिलफोर बहाल थी वञे। काफ़ी वक़्त खां वठी हीअ बंदि आहे, ऐं दादू, जामशोरो, सेवण सभु माण्हू परेशान आहिनि हिन रेलवे लाइन जे बहाल जे लाइ।
5: ट्रेनूं बंदि आहिनि, असांजो मुतालबो ॿियो को बि कोन्हे। सिर्फ़ इहो आहे त असांजी जेके बंदि थियल ट्रेनूं आहिनि 6-7 महीननि खां वठी करे महिरबानी करे हुनखे बहाल कयो, ऐं जीअं असांखे सफ़र में सहूलियत थिए। 3 ट्रेनूं असांजो ॾींहं जो हलंदियूं, 2 राति जो हलंदियूं, उन लाइ असांजो मुतालबो आहे ट्रेनूं असांजी बहाल करे।
6: हींअर कोचुनि जा डबल किराया आहिनि रेलवे स्टेशन में, इहो फ़ाइदो हूंदो आहे, थोरो किरायो डिस्काउंट हूंदो आहे, ऐं सफ़र असांजो भलो गुज़रंदो आहे। ट्रेन में इंसान भलो सफ़र थी थो वञे। हींअर असां महिरबानी करे असां सिंध गवर्नमेंट खे चऊं था त असांजी हीअ ट्रेन बहाल।
7: चवणु आहे त ग़रीब आहियां मां, हाणे पहिरियां त जॾहिं ॾिनी हुउमि सरकार ॿीअ खे, उन महांगो करे छॾियो भाड़ो। वरी जेकॾहिं शुरू थियूं उन फिटी कयूं, पंहिंजी हुकूमत शुरू कयूं, उन बि भाड़ो उहो ई रखियो। हाणे भाड़े में विज़ाबो थिए, ऐं ट्रेन बि ज़रूरु आहे। मिस्किन माण्हू आहे, अचे वञे थो, हुननि असांजे लाइ ज़ुल्म भारे छॾियो आहे।
8: फ़िलहालु स्टाफ लॻो पियो हुन लाहौर जे तरफ़ा, आडरा जीअं स्टार्ट थींदो त इनशाला आडरा अची वेंदो। 3 ट्रेनूं हुयूं रनिंग में, हिते मोहनजोदड़ो हुई, बोलान ट्रेन हुई, ऐं वरी खुशहाल हुई। तक़रीबन 6 महीना थी विया
9: आहिनि।
8: हाणे बस लाहौर खां हेडक्वार्टर खां लेटर ईंदो, इनशाला स्टार्ट थी वेंदियूं।
10: समूरी सूरत हाल में ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त वफ़ाक़ी सरकार खे बि हिन तरफ़ ख़ासि ध्यानु ॾियणु खपे, ऐं हीअ जेके वॾी आबादी वारा शहर आहिनि, इन ते समूरियूं ट्रेनूं जेके आहिनि से बहाल कई वञनि। कैमरामैन प्रीत कुमार सां गॾु प्रदीप कुमार, KTN न्यूज़, बांसेदाबाद।
0: नाज़रीन, मीरपुर भठोरो में सफ़ाई सुथराईअ जो अमल न थियण ख़िलाफ़ शहरी सरापा एहतजाज आहिनि। वधीक तफ़सील ॾिसूं था हिन रिपोर्ट में।
11: जी, मीरपुर भठोरे शहर में सफ़ाई सुथराई जी ख़राबु सूरत हाल, गटर नाला पलटिजी पवण सबबि हिते वार्ड नंबर 1 ऐं वार्ड नंबर 4 जे रहवासियुनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई वई आहे। अचो त पाण एहतजाज कंदड़ शहरियुनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त उन्हनि जो छा चवनि।
12: ड्रेनेज सिस्टम मुकमल तबाह आहे शहर जो, शहर में करोड़नि जी बजट हुजण बावजूद बि शहर में अॼु ताईं को बि तरकारी कमु न थियो आहे। वाटर सप्लाई तलाई का बि सफ़ाई कोन्हे, जेको पाणी शहर में सप्लाई थो थिए उन मां चमड़ी बीमारियूं वधनि पियूं, चेयरमैन के चाहूँ तो ऑफिस में वनू था टी एम ओ चेयरमैन असाई का भी बुधन तैयार को अज अस मुतालबो यो है आला अख्तियार को एक्शन
9: अग जो धरण हो वजूद भी को एक्शन को खड़ो अ मू को आया को उतरे मिट्टी वगैरह को लथी आ टाउन के तरफा को मू अ को आयो असि चाहूँ तो जो सफाई सुथराई कर दिन
12: भठोरे शहर जो टाउन बुख वाल तबाह है न गटर नाला न तला जो पानी एडो गंदो थी चुको है जिनमें बाकायदे बीमारियों थी चुको
11: है शहर में सफाई सुथराई जो निज़ाम बहाल करे तरक्याती कम कराए पीण जो साफ पानी मुहैया करे गटर नालियों की सफाई न कराई वही तो एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो आकाइज़ोर केटीएन न्यूज़ मीरपुर भठोरो
0: नाजरीन फुलजी स्टेशन के गोठ एम एच पावर में बुनियादी सहूलतू न हुजण खिलाफ रहवासी सरापा एहतजाज बणियल आहिनि वधीक तफ़सील ॾिसूं था इन रिपोर्ट में
13: जी बिल्कुल फुलजी स्टेशन भरसा एम एच पावर के गोठ इब्राहिम कची में मौजूद आई यूसी अलाहाबाद जो वडे में वडो गोठ है इब्राहिम कची पावर जैमें बुनियादी मसलों की सहूलत की खोट खिलाफ गोठाणा एहतजाज कर रहा है अचो तो एहतजाज कल बोल क्यों तो उन्होंने चवण है
14: गोठ वी तारीखी हेखत रखड़ा एम एच पावर जो दुनिया लेवल ते महकक अदीब दानश्वर डाहो रीखर कोने जो गोठ को भी बुनियादी मसलो को भी हल थल कोने को न ड्रेनेज आ न पानी जी का सहूलत आ न स्कूल में को चौकीदार आ न को इन अस्पताल में मेडिसन वगैरह उहे भी कोन के रोड भी कोने को
15: गटर जो पानी असा के पियण शुरू कयो आ सजो गोठ टे मेल भरे वही पानी भरे तो अचे पियण जो ये असा यो हालत असाजा रोड रस्ता अस गाल मनऊ था गवर्नमेंट भी असि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्हें असे पेवर ब्लॉक या जे रोड ठाना हो ठेकेदार टोड़े छाया उन्हें में नयू लाइनों अचे विछाई उन्हें में काफी घर किरी पियान ता डिठो तो भित्तियों लेटल आयो घर लेटल आ हर एक जगह ता पब्लिक एलान दी ना आली नयू नालियों विछाए असाजा घर किराया नहीं कड़ो गटरन दे उन्हें लाइन मो असा के मथों लाइन जिनका पूरी न वही उन्हें में पानी असा के पलीत पानी पियाने की कोशिश कई है असा इन बेशुमार क्यों था असाने कोर्ट में भी केस दाखिल कंदी असा तवा दावत दिनी बर मेहरबानी कर आला ऑफिसर के तवा के इन न्यूज चैनल इन केटीएन वारन के या असा चाहूं था असाजे यो जो को रिपोर्ट मथे रखन तो इतने अस पुलिस ना है असाड स्कूल में चौकीदार ना
16: एक वडी आबादी ते मुश्तमिल गोठ है जिन माना को भी बुनियादी मसलो अस हल ना थो इतने न ड्रेनेज सिस्टम है न का बी सहूलत है चूंडियल नुमाइंदन का असा यह अपील है तो असा बराए मेहरबानी कर जे बुनियादी मसला असा फुलफोर हल कया
17: दानश्वर इंजीनियर एग्रीकल्चर जा माहिर एम एच पवर जो ये गोठ है असा हुकूमत का पुरजोर अपील था क्यों तो ही गोठ तमाम सहूलत खूँ महरूम आ वजीर अला सिंध खो अपील करे पुरजोर अपील करे असा एहतजाज रिकॉर्ड था करायूं तो जी असा के बुनियादी सहूलतू डनियो वन इन गोठ की मालिकी कई वे
13: कैमरा टीम गुलाम सरोवर पवर केटीएन न्यूज फुलजी स्टेशन
0: नाजरीन सखर में योम दिफा के मौके से झंडो फड़काए वो है तफसील ऐसा था इन रिपोर्ट में
18: जी बिल्कुल मुल्क के बेन शहर सखर 6 सेप्टेम्बर योम दिफा मल्हायो पियो वञे नेवाले सां सखर जे वॉकिंग ट्रैक में पुरवकार तकरीब मुनक़िद थी वई जंहिंमें सिंध जो सभु पहिरियों ऐं पाकिस्तान जो ॿियो नंबर सभ खां वॾो जेको झंडो आहे उहो फड़कायो वियो आहे जो तकरीब में आयल महिमाननि खां पुछूं था त उहे योम दिफ़ा जे हवाले सां छा था चवनि
19: राज तहसीन पेश करते हैं राज अक़ीदत पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं उन शहदाओं को उन शहदाओं की ख़ासकर फैमिलीज को पेरेंट्स को बच्चों को वालदेन को और इस अजम के साथ कि ये शहदों की शहादत इस कौम पे एक कर्ज है और हमें पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाने के लिए हर मोड़ पे हर महाज पे हर पाकिस्तानी को अपने अपने शोबे में दिफा का उसी तरह मुजाहरा करना होगा इन शहीदों के पाकिस्तानी की
20: पाक फौज ना सिर्फ ना सिर्फ

0: शाह साहब फरमायो आहे त साइनम सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी फनून तैफा में कश्मोर भी एक अहम हैसियत रखे तो इल्म अदब जे हवाले सा शाबान बख्त मंगी साहब एक रोशन मिसाल आए जे इल्म अदब सहाफत में भरपूर किरदार निभायो बे तरफ गाल कजे ता हाथ जे हुनर झंडी जे कम में चाचो अब्दुल अजीज सुमरो पांजो मट पान हो इन्हीं हुनर में कमाल जी कारीगरी जे एतराफ में खे सदारती अवार्ड सा पिण निवाजो वयो कश्मोर में झंडी जो कम एतरो त पुराणो आहे जेतरे सिंधु माथरे जी तारीख ही इहो हुनर आहे जेको अण घणी काठ के छिले छांगे बोरे मथा रंग चाढ़े कारीगरी सा कटे कोरे सोह जा निराला नक्श निर्वार कंदो आहे कश्मोर अड़े हजारे हुनर में डिहा डी मशहूर है हिन कमाल जी कारीगरी में जे नालो खणजे ता अब्दुल जी सुमरो मरूम सब खां निरो निर्वार नजर इंदो ही इन्हीं विगामेल जो इयो विंझार हो जेको वण वंदे हीरन जेड़ा हसीन जवाहरन जेड़ा जमाली शेपारा तखलीक कंदो हो ही शहर अंगेज शख्स खुदार बुर्दबार आए खंदगी जे हर जायके के मुर्के खिले खिखारे चखण जा सब हुनर जानी दो हो आर्ट जी दुनिया में संदस शोहरत उन कामिल ताई होतल हुई हकुमत पाकिस्तान विघामिल जो विंझार तस्लीम कंदे चाचे अब्दुल अजीज सुमरो की सदारती अवार्ड सा नवाजो वयो
1: कश्मोर जो पहरियों आर्टिस्ट ड्रामा नवीस ड्रामा निगार डांस स्टेज ते कंदड़ पहिरों पहिरों जेको उनजो हिकिड़ी रुख आहे उहो आहे स्टेज ड्रामा नवीसी जो जेकी उन पाण सां गॾु उनजो आख़िरी बि जेकी जेको हिकु लुक हुई उहा अदाकारी वारी हुई उनजा वॾा वार उनजो अंदाज़ बयान असां वेही कचहरी कंदा हुआसीं पोइ चवंदो मामा असां माना बड़ा ड्रामा कयासीं जंहिंमें दीवान कम्युनिटी तव्हां घणो हूंदो असां सां जंहिंमें असां कॾहिं कॾहिं ज़ैफ़ान जो रूप बि कंदा हुआसीं माना जंहिंखे थिएटर चवंदा आहिनि थिएटर जेको शुरूआति कश्मोर में थी उहा मरहूम अब्दुल अज़ीज़ गांधी ऐं उन बाक़ायदा अचे असां डांस बि कईसीं ऐं ड्रामा बि कयासीं हितां खां वठी जेके जेके असांजा पसगिरदा जेकाबाद ज़िले तक असां थिएटर विया ड्रामा न हुया थिएटर असां थिएटर कंदा हुआसीं उन थिएटरनि में मुख़्तलिफ़ असांजूं माना जेके माइनि जा रूप हूंदा हुआ असां मर्द कंदा हुआसीं असां ऐं मामे जा जेके वॾा वार हूंदा हेसि तक आख़िरी ताईं जेसि ताईं ज़िंदा हुयो ॾिठोसीं असां असां उनजो आख़िरी जेको हिकिड़ो इंटरव्यू करायोसीं फॉरेन जो आयल हुयो उनखे उन इंटरव्यू ॾिनो उनखां पोइ जी ॿी शख़्सियत आहे ॿियो रुख आहे हिकिड़ो ॿियो रुख आहे हिकिड़ो पंहिंजो पंहिंजो पंहिंजे उन जेको कम सां उन जेको रखाण के कम सां उन कश्मोर जी तारीख़ में पहिरों दफ़ो चिटसाली जो कमु जेको जेको पाण जंहिंखे पंहिंजो मेहन जो चवंदो उहो छेणा छेणनि ते सुकाए करे उनमें काठी विझी करे उन छेणे खे रंग नयूं पाओ ठाहियईं ऐं पाओ उहो सदर अयूब खे पेश कयईं मूंखे उहो यादि आहे उहे उनजा लफ़्ज़ आहिनि त मामा मां पहिरियों पहिरियों जेकी चिटसाली कई उहा छेणे खे तव्हां पाण सम्झो था पिया त केॾो हिकु नाज़ुक कमु आहे छेणो उन खां पोइ उन ॿियो जेको वरी चिटसाली कई उहो वरी अंडे जेको मुर्ग जो अंडो आहे वरी उन ते उन कई वरी टी कई पंहिंजो गिलास पाण ॾिठो गिलास में काठी विझे हिन तरफ़ बि काठी हिन तरफ़ बि काठी पोइ हुन में ॿ सुराख हूंदा आहिनि माना ॿ किलियूं उनखे पोइ घुमाईंदा आहिनि पोइ घुमाए करे उन ते चिटसाली कंदा आहिनि ऐं उनजो आख़िरी जेको रंग हो कश्मोर शहर के नई पेन ते चिटसाजी हू घणो की शख़्सियत हुई असांजी अदब जी बि शख़्सियत हुई असांजी माना उन थिएटर मां ड्रामा हाणे छा शुरू अॻे चइबो थिएटर खे उहो थिएटर न ॾिसो हुयो पंहिंजो लिखाईंदड़ हुयो ऐं थिएटर पंहिंजा पंहिंजा पाण लिखंदो हुओ ऐं उनजा जेके रोल आहिनि उहो बि उहो नॉमिनेट पाण कंदो हुयो जेके उनजा लफ़्ज़ असां काफ़ी कचहरियूं थी वञूं असां वारा बदनसीब आहियूं जो असां उनखे पंहिंजे कलमी पोरे सां उनखे अगरि नोट कयो आहे त उहो घणो मवाद थी सघे पियो
2: चाचा जी पैदाश जेकी थी उहो 1931 में थी त संदसि जो वालिद साहिब जेको असांजो ॾाॾो हुयो उहो बि हिकिड़ो जनरी जो तमामु सुठो कारीगर हुयो अंग्रेज़ जॾहिं हिन इंडो पाक ते क़ाबिज़ हुया या उनजी हुकूमत हुई त उन्हनि दौर में अंग्रेज़ पंहिंजनि फैमिलियुनि सां इहे ईंदा हुया उहे अची उनजो कमु ॾिसंदा हुया पोइ चाचा साईं खे जेको मिलियो जेको कम जो ख़्याल, उहो उन पंहिंजे वालिद साहिब खां मिलियो ऐं चाचा साईं पंहिंजी प्राइमरी ताईं तालीम कई। उन खां पोइ उनखे पंहिंजे कमकार सां एॾो लॻाव थियो, अलहमदुल्ला जो सिंध छा पूरो पाकिस्तान छा पूरी दुनिया में उहो मशहूरु थियो। तंहिं मां चाचा खे जेको एवॉर्ड मिलियो चाचा अब्दुल अज़ीज़ साहिब खे 1993 में, जॾहिं गुलाम साह खान सदर हुयो ऐं मोहतरम बेनज़ीर साहिबा जॾहिं प्राइम मिनिस्टर हुई पाकिस्तान जी, उन्हनि ॾींहनि में तमगा इम्तियाज़ उनखे मिलियो, गोल्ड मेडल मिलियो। ऐं इन कम जे तवसो सां, इन जनरी जे कम जे तवसो सां उनखे लोक विरसा वारनि 2 दफ़ा महिरबानी कई, उहो उमिरो बि करायो। चाचा जी जेको जनरी जो कमु हुयो उहो एतिरो त मशहूरु हुयो, एतिरो त मशहूरु हुयो जेको माण्हू ॾिसे उन कम खे त उहो कॾहिं विसारे न सघंदो हो। उन खां अलावा हिकु दौर में, जॾहिं पंहिंजी जवानी जे दौर में उन्हनि खे हिकिड़ो वॾो शौक़ु हुयो, उन दौर में हिकिड़ो मुर्गी जो अंडो माण्हू जेको खणंदो आहे हथ में बि, उहो ख़्याल सां खणंदो आहे, पर हुन जी एॾी त पंहिंजे कमकार सां लगन हुई, उनखे एतिरो शौक़ु हुयो जो उन मुर्गी जे अंडे खे उन जनरी ते रंग ॾिनो ऐं अहिड़ो ख़ूबसूरत रंग ॾिनो जो अॼु ताईं उहो हिकिड़ी मिसाल बणियल आहे।
3: वकील आहियां, प्रैक्टिस थो कयां, वकाल थो कयां, त बाबा अब्दुल अज़ीज़ सुमरो उन ते जेतिरो ॻाल्हाइजे उहो घटि आहे, छो त हू असांजे लाइ हिकु रोल मॉडल हुया, छाकाणि त हुन 8 सालनि जी उमिरि में पंहिंजे वालिद खां जनरी जो कमु सिखियो ऐं हुन सां गॾु हू हिकु एक्स्ट्रा जंहिं चइजे न टैलेंटेड हुयो। हुन टाइम में ई उहो ड्रामनि में बि कमु कंदो ऐं पंहिंजे दौर जो हिकिड़ो मशहूरु आर्टिस्ट बि हुयो। अब अब्दुल अज़ीज़ खे सदर गुलाम साह खान जे दौर में सदारती अवार्ड में मिलियो। हुन टाइम में मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिबा मुल्क जी वज़ीर आज़म हुई। जॾहिं हुन ॿुधो त कश्मीर जो शहर जो आहे ऐं मुंहिंजी डिवीज़न जो आहे, त मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिबा बि उठी करे ताड़ियूं वॼायूं ऐं पंहिंजी ख़ुशी जो इज़हार कयो ऐं ॾाढे अब्दुल अज़ीज़ खे ऑफर कयईं त तव्हां जेकी शइ घुरो ऐं तव्हांखे ॾियण लाइ तयारु आहियां। पोइ ॾाढो अब्दुल अज़ीज़ हुनखे इहा ॻाल्हि कई त मां उमिरो करण थो चाहियां, त मूंखे उमिरो करायो। पोइ बेनज़ीर साहिबा हुनखे सरकारी ख़र्च ते हिकु न बल्कि 2 दफ़ा उमिरा कराया ऐं वधीक पुछियईं त अगरि को ॿियो, जेकी मां तव्हांजी सहायता कयां, त ॾाढा अब्दुल अज़ीज़ चयो त असांखे को अहिड़ो प्लेटफॉर्म ॾियो जीअं असां इन कम खे वधायूं। पोइ बेनज़ीर साहिबा जी कोशिशन सां सनसिमाल इंडस्ट्रीज़ असांखे कश्मीर में सेंटर मिलियो, सरकारी उन्हनि खे दुकान मिलिया, उन्हनि में उहे कारीगर वेठा, उन्हनि तमामु सुठो कमु कयो ऐं इहो जेको दौरु हुयो जनरीअ जे कम जो अरूज जो दौरु हो।
1: चाचे अब्दुल अज़ीज़ सुमरो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रहियो। चाचे अब्दुल अज़ीज़ सुमरो जो जेको मेकअप हूंदो हो, मेकअप आर्टिस्ट हुयो, पाण हिकिड़ो कमाल जो आर्टिस्ट बि थी गुज़रियो। उनजे अंदरि खोड़ सारियूं सलाहियतूं हुयूं अदाकारी जे हवाले सां ऐं उनखां अलावा पंहिंजो मेकअप आर्टिस्ट जे हवाले सां ऐं ॿियो जेको विघामल आहे पंहिंजो जनरी जो कमु, जनरी जे कम में एतिरी महारत रखंदड़ हुयो चाचो अब्दुल अज़ीज़ सुमरो साहब, जो उनखे वक़्त जी हुकूमत वक़्तु जेको आहे उनजे हुन फन खे साराईंदे खेसि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो जेको आहे एवॉर्ड मिलियलु हुयो। हीउ कश्मीर जूं उहे शख़्सियतूं आहिनि।

0: चाचो न सिर्फ़ विगामियल जो विंझार हो पर एक कमाल जो मेकअप आर्टिस्ट पिण हो अदाकार पिण हो। मुखे चिट्टी सहबर आए कश्मोर शहर जे मेन प्राइमरी स्कूल में स्टेज ड्रामो हो। जरे ड्रामो शुरू थियो ता उन में एक खूबसूरत छोकरी जो पिण किरदार हो पर जने ड्रामे जी पुजाणी थी सब वेठल हैरत में हुआ ता इया खूबसूरत निंगरी केर हुई। जने तारीफ थियो ता खबर पई ता इया निंगरी ना पर निंगर किरपाल केसवाणी हो। मानुन के दंदन में अंगरियों अची वयूं इयो चाचे जे मेकअप जो कमाल हो जे किरपाल के किरपा बनाए छड़ियो। मुंजी वड़ी ख्वाहिश हुई ता चाचे सा एक गजी ड्रामो कया। मुंजी इया ख्वाहिश बे चाचे पूरी कई। मां सांस गद स्टेज ड्रामो सोनी मयार गद कयो
1: बिठवा बियो छा करे आन राहे एड़ी
2: हा बा विचारी सुरमी की किस्मत एड़ी हो चाचो सुमर भी आकर कैसी ताई कदो
1: हा बाबा बस वरी भी उन्हीं के बस वरी भी उन्हीं के लाज आए वो ही सणायूं सोलायूं कंदो अबा यो मां अंदर जेल सिधी करे वठा तू भी हथ मुंह धोई वठ
2: ठीक है। अच्छी वही हां तुखे भला मुझे बुरी लगी आए छा
3: किना बुई पवे तुझे दुश्मनन के मुखे त तो मां खुशबू इंदी आ है भला रात जो देर सा घर तो अची पहे दाने वाड़ दानी थई छा
2: तुखे मु में अलाए छा नजर आयो आ है जो लगी वती थी मुझे कट बाकी पार के केर खंगे ही को
3: मासर के मौके न पो
2: छो अबे कम करन छडे दिनो आई
3: केड़ो
2: नलकन ठाण जो तोजे घर जो नलको खराब आए छा
3: मोजो दिमाग खराब आ
2: अबा दिमाग सा जो काम ना है कदो प्लंबर उओ भी के जमाने में होयो हाने ना है कदो
3: चमो महला थी
2: एतरी जल्दी बेजार थी वही है कोई तू हमेशा गडरान जो गालू छो कंदी आई कुड़ी

0: ಸಾವಿರ ಹೋದ ಗೊತ್ತು ಪಾಯ್ ಕಾರಣ ಬಹುದ ಬಹಾದ್ರಿ अरे मां चवाए तो गोपाल जो सची पची जो कारनामो बुधाए तो मां चवाए तो खबर दितो तो मुजी कावड़ जी
1: तो पड़ी पुछो
0: हां
1: चले हम थाने चले हो
0: हां
1: तो थाने जी ठेकी पुलिस आए सब बाहर निकली दिया
0: छा चले
1: सही मां के बाहर ही है यार
0: जोरदार ताली मुझे याद ले वो तो पाटला अरे तू जो देखो कारनामो को ने बाहर पूरी जो ना झुमटा झुमुर साए
1: सही मां के अदा कर जो हो जाओ भाई मेहरबानी जो
0: जुमलो डायलॉग तो डायलॉग मुझे चई देखे पसंद पे दोस्त फिल्म में कम पको
2: अज जडे चाचो असांजे विच में मौजूद न आहे पर संदस फन ऐं सारोणियूं असांजे मन में हमेशा याद रहंदा असां चाचे लाइ ॿियो त कुझु नथा करे सघूं पर उन जे फन खे हमेशा याद बणाइण लाइ कश्मीर शहर जे के हिकु चौक ते संदस नालो सां मनसूब कयूं त भलो थी पए
3: इहो मां जस ॾींदुसि ख़ासि करे केटीएन खे जन हिन टॉपिक ते हिकिड़ो शानदार क़िस्म जो हिकिड़ो प्रोग्राम जोड़ियो आहे ऐं उन्हनि खे यादि करण जे लाइ हिकिड़ो रस्तो वरितो आहे मां सम्झा थो त इहो हिकिड़ो ख़ुशि आईंदो हूंदो ऐं उन खां अलावा असांजी जेका नौजवान नसल आहे उन ताईं हीउ पैगाम पहुचाईंदो त पहुचंदो त असांजा जेके वॾड़ा हुआ उन में शबान बख्त मंगी साहिबु ऐं चाचो अब्दुल अज़ीज़ सुमरो साहिबु उन जे लाइ ही हिकिड़ो बहितरीन हिकिड़ी भेटा ॾींदड़ प्रोग्राम आहे
4: तव्हां ज़िक्र कयो चाचे अब्दुल अज़ीज़ सुमरे जो उहो वरी पंहिंजे फन में यकता हो उन जो पंहिंजो जेको फन हो पंहिंजे जनरे जो ख़ासि तौर ते कश्मीर उन में हुन जे फन जहिड़ो को ॿियो बि उस्तादु पैदा थी न सघियो इहो सबबु आहे जो उनखे तमगाए हुसन कारकर्दगी ग़ुलाम इसा ख़ान जंहिं वक़्त में सदर हो उन वक़्तु हुनखे अता थियो
5: चाचो अब्दुल अज़ीज़ जेको सदारती अवार्ड याफ़्ता हुयो उन्हीं जो काशी जे कम ते एतिरो अबूर हुयो जो हिकिड़े भेरे उनखे चयऊं त असांखे जेको आहे ही खाठी जा काशी वारा पावा ठाहे ॾे त असां उहो जेको आहे जंहिंमें वज़न न हुजे उन हिकिड़ो पावा ठाहिया उन्हनि खे रंग कयईं रंग करण खां पोइ उन अवार्ड में जिथे इनखे सदारती अवार्ड मिलियो बैलून अक़वामी इहो सेमिनार हुयो उन में हिन जॾहिं उहो खणी माण्हुनि ॾिठो त हुन में को वज़न कोन हुयो त उन सदर वक़्त जे सदर चयुसि त ही छा सां ठाहियो अथई जंहिंमें हीअ कहिड़ी काठी आहे जंहिंमें वज़न कोन्हे चऊं त उहो भञी ॾेखारियऊं त उहो छेणो हुयो उन छेणे खे उन जेको आहे अहिड़े नमूने सां तयारु करे उन में रंगाई करे उन ते इहो कयो जंहिंखां पोइ उनखे जेको आहे सदारती अवार्ड मिलियो बहरहाल उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ जायुनि ते हिकिड़े भेरे मां अकबाउ सुल्तान ते वियुमि मूंखे ॿुधायूं त ही चाचे अब्दुल अज़ीज़ जे हथ जो जेको आहे चबूतरो ठहियल हुयो उते बहरहाल हिकिड़ियूं असांजे कश्मीर शहर जूं अजीब अज़ीम शख़्सियतूं जेको असां खां विछड़ी वियूं आहिनि
2: असांजे कश्मीर जी हिकु ॿी शख़्सियत जंहिंजो नालो शाबान बख्त मंगी मशहूरु आहे शाबान बख्त मंगी अदब जे हवाले सां मशहूरु हो ऐं ॾाहो साफ़ ई पिणु हो शाबान बख्त जो पूरो नालो मोहम्मद शाबान वल्द रसूल बख्त मंगी हो संदसि जनम 1 जनवरी 1933 में कश्मीर जे शहर में थियो हिन इब्तिदाई तालीम कश्मीर मां मैट्रिक कराची मां ऐं कॉलेज जी तालीम सरवरी कॉलेज हाला मां वरती। शाबान बख़्त केतिरियूं ई सरकारी तोड़े गैर सरकारी नौकरियूं कयूं पर संदसि दिलि न लॻी। सहाफ़त सां दिलचस्पी हुजण सबबि संदसि वास्तो नामवर शाइर मखदूम मोहम्मद ज़मान तालिबे अल मौला सां थियो, जंहिं जी सरपरस्ती में निकिरंदड़ महवार अदबी रिसाले फिरदोस ॻोठ सुधार, सिंध जो मशहूर अदबी रिसालो नई ज़िंदगी, शाबान बख़्त मंगी इन्हनि में कमु कयो ऐं छापाई कई। शाबान बख़्त मंगी हिकु साफ़ी हुजण सां गॾो गॾु सुठो ड्रामा निगार पिण हो। संदसि हिकु ड्रामो पाकिस्तान जी पहिरीं सालगिरह जे मौके ते 1948 में इक़बाल मेमोरियल लाइब्रेरी कश्मोर में पेश कयो वियो। शाबान बख़्त मंगी जी शायरी मजमून में शुगुल शबाब असां अवां जा थियूं था, जग फानी जग वाली फानी सराइकी शायरी शामिल आहिनि। उनखां सवाइ नसर में वर वतन जाई नावल, सिंधी गाइड जमीला नावल, सोणी मयार नाटक, उमर मारवई नाटक, मसूर मुजाहिद नाटक शाया थियल आहिनि। आख़िरी पसा में बि हुन शाह साहिब जे रिसाले ते कमु कंदे हिन फानी दुनिया मां लाॾाणो कयो।
3: शाबान बख़्त मंगी साहब जो जेको जेतिरे ताईं मूंखे मालूम आहे त हिकिड़ो ग़ज़लनि जो गुलदस्तो जेको आहे उनजो तमामु घणो मशहूरु किताबो ऐं ॿियो त निसाब जे अंदरि बि जेको आहे शाबान बख़्त मंगी साहब जूं ग़ज़लूं ऐं उन खां अलावा उन जूं जेके तहरीरूं हुयूं उन दौर जे निसाब में बि तमामु घणियूं हलियूं। ऐं रिसाले जे हवाले सां मां सम्झा थो त नई रोशनी नाले सां को रिसालो हुयो, उनजो एडिटर रहियो घणे वक़्त ताईं जेको आहे त हैदराबाद में उन्हनि पंहिंजी ज़िंदगी जा जेके ॾींहं हुया उहे बसर कया ऐं आख़िरी आयामनि में उन जेको आहे पंहिंजे शहर कश्मोर खे जेको आहे उनखे उहो पंहिंजो महबूब शहर भाए ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जा आख़िरी आयाम जेके आहिनि उहे पंहिंजे शहर जे अंदरि घारिया।
6: शाबान बख़्त सिंध जे क़दीम शहर कश्मोर में ॼाया ऐं इब्तिदाई तालीम कश्मोर में हासिल कई।
7: चंद्र

छम छम किताबें लेके निकले हम। अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

गज़ा वाला रियल फलस्तीनी इलाइक़े जो हिसो आहे मनसुफ हाणे अमन जो वाहिद रस्तो ॿ रियासती हल आहे फलस्तीनियुनि खे बेदख़ल करण जूं कोशिशूं खिते जे अमन इस्तेहकाम खे नुक़सान पहुचाए सघनि थियूं इसराइली वज़ीरनि पारां फलस्तीनियुनि जे गज़ा मां निकालीअ ते पाकिस्तान समेत अठनि मुल्कनि जी मज़ामत गॾियल पधिराईअ में ॼाणायो वियो आहे त फलस्तीनियुनि जी जबरी बेदख़लीअ जी कोशिश खे रदि कयो वञे थो अहिड़ी कोशिश आलमी कानून जी भञकड़ी आहे पाकिस्तान मिस्र इंडोनेशिया उर्दन कतर सऊदी अरब तुर्किया ऐं गॾियल अरब इमारातनि पारां गॾियल पधिराई जारी मिस्र ऐं पाकिस्तान पारां इस्लामाबाद मफ़ामत यादाशनामे ते अमल दरामद ते ज़ोर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं मिस्र जे परॾेही वज़ीर विच में टेलीफोनिक राब्तो बितरफ़े सहकार इलाक़ाई ऐं आलमी सलामतीअ ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई पाकिस्तान ऐं मिस्र पारां सफ़ारती कोशिशूं तेज़ करण ते ज़ोर

केपीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई 21 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दनि पाक अफ़गान सरहद खां दाख़िल थियण जी कोशिशि कई। सिक्योरिटी फोर्सिस जी कामयाब कार्रवाईअ में 10 दहशतगर्द मारिजी विया। उत्तर वज़ीरिस्तान में हिक ॿी कार्रवाई में पाक अफ़गान सरहद भरिसां सिक्योरिटी फोर्सिस जी मौसर कार्रवाई में 7 ख़ारजियुनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। कुवाट ऐं डेरा इस्माइल खान ज़िलनि में ॿिनि मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि में 4 ख़ारजी मारिजी विया। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश सदर आसिफ अली ज़रदारीअ चयो त पाकिस्तान जी सरहदुनि जो दिफ़ा ऐं दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो पहिरीं तरजीह आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग में पूरी क़ौम सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु आहे।

0: वतन के अजीम सपूतन के सलाम। सिंध समेत सजे मुल्क में अज एक अठो योम दिफा ए योम शोदा मल्हायो पियो वञे। नंढन तोड़ी वॾनि शहरनि में सेमिनार तकरीबूं कोठाए ऐं रैलियूं कढी वियूं। वतन जे दिफ़ा लाइ जान कुर्बान ॾींदड़ शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे भेटा पेश कई वई। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां योम दिफ़ा जे मौक़े ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ ज़रदारीअ चयो त 6 सेप्टेम्बर असांजे क़ौमी तारीख़ में यादगार मक़ाम रखे थो। ही ॾींहुं असांखे गाज़ियुनि ऐं शहीदनि जे अज़ीम क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारे थो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जे बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारे थो। क़ौम तर्फ़ां गाज़ियुनि ऐं शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। पाकिस्तान अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ फ़ाल किरदारु अदा कंदो रहंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ चयो त वतन लाइ जान ॾींदड़ वतन जे बहादुर सिपाहियुनि खे क़ौम कॾहिं बि न विसारींदी। योम दिफ़ा ते मज़ारे काए ते गार्ड जी तब्दीलीअ जी तक़रीब। पाकिस्तान एयरफोर्स जी कैडेट जी मज़ार काए ते शानदार परेड। गार्ड जूं ज़िमेवारियूं संभाले वरितियूं। तक़रीब खे ख़िताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फिसल चयो त पाक फिज़ाया हर ॾुखी घड़ीअ में क़ौम जे उमेदुनि ते हमेशह पूरो लथी आहे। फिज़ाई हदुनि जो दिफ़ा पाक फिज़ाया जे मज़बूत हथनि में आहे। हर ॾुखी घड़ीअ में पाक फिज़ाया पंहिंजूं ख़िदमतूं पेश कयूं आहिनि। योम दिफ़ा जे मौक़े ते हथियारबंद फ़ौज जो शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत। ISPR पारां जारी कयल बयान मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ ऐं एयर चीफ पारां शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयो वियो। हथियारबंद फ़ौज जे गाज़ियुनि खे बहादुरी ऐं साबित क़दम रहण ते सलाम पेश कजे थो। 6 सेप्टेम्बर क़ौमी इतिहाद जुरत बहादुरी ऐं अज़म जी लाज़वाल अलामत आहे। 6 सेप्टेम्बर 1995 ते पाकिस्तानी क़ौम वतन जे दिफ़ा लाइ मुतहदी दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो। शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसुल लाइ मशल राह आहिनि। ISPR पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त पाकिस्तान खिते में अमुन, खुशहाली ऐं इस्तक़ाम चाहे थो। अमुन अमान जी गॾियल अज़म खे कमज़ोरी न सम्झो वञे। पाकिस्तान ख़िलाफ़ कंहिं बि अग्राहीअ जो फौरी ऐं फैसलाइतो जवाबु ॾिनो वेंदो। क़ौम FBR जे बदउनवान आफ़ीसरनि खे पाले रही आहे। हुकूमत पंहिंजे नाक़िस हुकमरानी लिकाइण लाइ अवाम ते बार विझे थी। जमायत इस्लामीअ जे सरबराह हाफिज़ नईम जी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। हाफिज़ नईम चयो त अवाम जे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

0: दुश्मन के लिए तबाही, पाक फौज का हर सिपाही, 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम। पहचो शहर पहचो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।

0: दुश्मन के लिए तबाही, पाक फौज का हर सिपाही, 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम। सिंध के माथे का झूमर,
1: DFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज,

आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर यौम ए दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

नव मई केस में इश्तिहारी करार डिनल पीटीए अगवान हमाद अजहर मुल्तान मां गिरफ्तार। मुल्तान पुलिस हमाद अजहर के लाहौर पुलिस हवाले कर छो। हमाद अजहर नव मई वाले केस में घुर्बल हो। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकन में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। 21 खारजी दहशतगर्द मारजी वाया। आईएसपीआर मूजिब उत्तर वजिस्तान में दहशतगर्दन पाक अफगान सरहद का दाखिल थे की कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारजी वाया। उत्तर वजिस्तान में ही एक बी कार्रवाई में पाक अफगान सरहद भरसा सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 7 खारजी मारजी वाया। कोहाट डेरा इस्माइल खान जिलन में भी बिन मुख्तलिफ कार्रवाई में 4 खारजी दहशतगर्दन के मारे वो। सदर ए वजीर आजम पारा कामयाब कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सेज के भेटा पेश। सदर आसिफ जरदारी चयो तो पाकिस्तान की सरहदों को दिफा ए दहशतगर्दी का खात्मो पहली तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चवण हो तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज से गड बीठल है।

वतन के अजीम सपूतन के सलाम। सिंध समेत सजी मुल्क में अज 61 योम दिफा ए योम शहदा मल्हायो पियो वञे। नंढन तोड़े वॾनि शहरनि में सेमिनार तकरीबूं कोठाए ऐं रैलियूं कढी वतन जे दिफ़ा लाइ जान कुर्बान कंदड़ शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म पारां योम दिफ़ा जे मौक़े ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे खिराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त 6 सेप्टेम्बर असांजी क़ौमी तारीख़ में हिकु यादगार मक़ाम रखे थो। हीउ ॾींहुं असांखे गाज़ियुनि ऐं शहीदनि जी अज़ीम क़ुर्बानीनि जी यादि ॾिराए थो। वज़ीर आज़म जो चवणु हो त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जी बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानीनि जी यादि ॾिराए थो। क़ौम तरफ़ां गाज़ियुनि ऐं शहीदनि खे इख़राज तहसीन पेश कयां थो। पीपी चेयरमैन चयो त वतन लाइ जान ॾींदड़ वतन जे बहादुर सिपाहियुनि खे क़ौम कॾहिं बि न विसारींदी। योम दिफ़ा ते मज़ार क़ाइद ते गार्ड जी तब्दीली जी तक़रीब। पाकिस्तान एयरफोर्स जे कैडेट्स जे मज़ार क़ाइद ते शानदार परेड। गार्ड्स जूं ज़िमेवारियूं बि संभाले वरितियूं। तक़रीब खे ख़िताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो पाक फिज़ाइया हर ॾुखी घड़ीअ में क़ौम जी उमेदनि ते हमेशह पूरो रथी आहे। फिज़ाई हदनि जो दिफ़ा पाक फिज़ाइया जी मज़बूत हथनि में आहे। हर ॾुखे वक़्त में पाक फिज़ाइया पंहिंजूं ख़िदमतूं पेश कयूं आहिनि। योम दिफ़ा जे मौक़े ते हथियारबंद फ़ौज जो शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत। आई एस पी आर पारां जारी कयल बयान मूजिबि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ़ ऐं एयर चीफ़ पारां शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयो वियो। हथियारबंद फ़ौज जे गाज़ियुनि खे बि बहादुरी ऐं साबित क़दम रहण ते सलाम पेश कजे थो। 6 सेप्टेम्बर क़ौमी इतिहाद जुरत बहादुरी ऐं अज़म जे लाज़वाल अलामत आहे। 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी क़ौम वतन जी दिफ़ा लाइ मुतहदी दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो। शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसुल लाइ मशल राह आहिनि। आई एस पी आर पारां जारी कयल पदराए में वधीक चयो वियो त पाकिस्तान ख़िते में अमुन ख़ुशहाली ऐं इस्तेहकाम चाहे थो। अमुन ऐं अमान जी गॾियल अज़म खे कमज़ोरी न सम्झो वञे।

दिफा के शहीदन के दिहाड़े के मौके से मलीर गिरिजन में तकरीब वे वजीर मुराद अली शाह कोर कमांडर कराची समेत सिंध रेंजर्स पुलिस के आला ऑफिसर की शिरकत वे वजीर सैयद मुराद अली शाह कोर कमांडर शहीदन के यादगार से गुलन की चादर चाढ़ी फातह पानी भी कई दुआ भी घुरी तकरीब दौरान पाक फौज की चाक चौबंद दस्ते पारा शहीदन की यादगार से सलामी पेश कई वही शहीदन के वारसन से वे वजीर ए कोर कमांडर की मुलाकात शहीदन की बेमिसाल कुर्बानी से खराज तहसीन पेश कौम एफ बी आर की बदउनवान ऑफिसर के पाले रही है हुकूमत पंजी नाकिस हुकुमरानी लिखाने लाए अवाम से बार विछे थी जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गाल बोल कंदे चेवा है अवाम के पैसन से रुगो कुछ मानुन जो पेट भरे पे वे आई पी पीस के इन बिजली जा उन बिजली जा पैसा दिना वन था जे ठहे ही न थी शहबाज हुकूमत 4000 अरब का लेवी वसूल कर चुकी है नू लीग पंजे इतिहादन के भल जा खुश करे पर सिंध के कुर्बानी जो बकरो बनाने का पासो करे सीनियर वजीर शर्जील मेमन ख्वाजा आसिफ के बयान से रद्द अमल डींदे तो पंजाब असेंबली सराकी सूबे के हक में ब भेरा ए सिंध असेंबली सिंध में सूबा ठाने खिलाफ 8 भेरा ठहराव मंजूर कर चुकी है।

वतन के अजीम सपूतन के भेटा पेश करने लाए मुख्तलिफ शहर में रैलियों तकरीबू हैदराबाद सखर मिठी कंदकोट सामारो उबावड़ो रोहड़ी टंडो आदम टंडो गुलाम हैदर तंगवाणी ए बेन शहर में रैलियों कढ़ी पाक फौज शहीदन के भेटा पेश की हुई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम नेटवर्क पर योम दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया। पाक फौज को सलाम।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।

जनाब, आप लोग सुन रहे हैं मैडम तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में राह हक के शहीदों। बहुत अच्छा सा ये नगमा है और इसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ये महाज पे जाकर गाया था। इस पर हमारे फतेह पाकिस्तान को और भी जोश आता था। उसको जितना सुनो ना।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दुश्मन के लिए तबाही। पाक फौज का हर सिपाही 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जीए एफएम नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया। पाक फौज को सलाम।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मुझे ये बताएं कि आपके घर में जो भी मेरे लिसनर्स हैं, जो जहां से मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान के, दुनिया के जिस कोने में बैठे मुझे सुन रहे हैं, खासतौर सखर वालों, तो मेरे सिंध वाले यानी सिंध के लोग और सखर वाले जरूर मुझे बताएं कि भाई आपके घर में, आपके खानदान में कोई ऐसा जिसने फौज पाकिस्तान में, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में हमारी फौज के, चाहे वो नेवी हो, मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो या फिर पुलिस, जिसने भी मतलब सर्विस की है, मतलब पाकिस्तान की खिदमत की, खासकर पाक फौज में सरहदों पर, या कोई आपका रिश्तेदार अजीज शहीद हुआ है, तो मुझे मैसेज करके उनका नाम ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने प्रोग्राम में उनका नाम शामिल कर सकूं और उन्हें सलाम पेश कर सकूं, इन बहादुर जवानों को जो आज भी सरहदों पर खड़े हमारे मुल्क में, मुल्क का दिफा कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क से बाहर दुश्मनों को भी देख रहे हैं और जो हमारे मुल्क के अंदर दुश्मन अनासर उनसे भी लड़ रहे हैं, जो वो हर महाज हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं, ज़रूर उनका नाम बताएं, मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी। और एक और अच्छा सा मिली नगमा जो है मैं अपने नौजवानों के नाम करती हूँ आज की शाम, अफवाज पाकिस्तान, शहदा पाकिस्तान के नाम। तो जी बिल्कुल मेरे साथ आवाज़ के रिश्ते में एक और जो है मैंने अच्छा सा नगमा प्ले कर दिया है, मैं भी तो पुकारा।

जब नाम पुकारे जाएंगे तो मैं भी तो पुकारा जाऊंगा जी, बिल्कुल पुकारे जाएंगे। और आज इनके नाम पुकारे नहीं जाते बल्कि दिलों में जिंदा हैं।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस। तीन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

साथ हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है 5:50 PM. तो जी बिल्कुल हमारे पास टाइम कम से कम ज़्यादा रह चुका है, वक्त का पता ही नहीं चलता आप लोगों के साथ ही. और एक अच्छा सा ये रिश्ता आप लोगों का हमारे मेरे साथ जुड़ जाता है, मेरा आप लोगों के साथ और बरकरार रहता है हमेशा की तरह. हाँ तो जी जनाब, थोड़े से जो कुछ कमेंट्स आ चुके हैं मैं सोच रही हूँ प्रोग्राम में वो शामिल कर दूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 8881 पर भी. आप लोग अपना मैसेज लिख सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने टाइप करना है SKR एंड अपना जो मैसेज है आपने वो टाइप करना है, देन सेंड कर देना है आप लोगों ने 8881 पर, यानी 8881 तीन टाइम 8 और एक टाइम 1, ठीक है. तो 8881 पर आपने सेंड कर देना है. तो जी ये कमल के नाम सेंड कर दीजिएगा और मैं आप लोगों का मैसेज प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगी. साथ साथ अगर आप लोग इस आवाज के रिश्ते में अपना कोई भी मैसेज किसी अपने को पहुंचाना चाहते हैं जो आप डायरेक्ट में नहीं कह सकते, तो वो भी आप पहुंचा सकते हैं, कहलवा सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, आप उनको अपनी प्रोग्राम शेयर कीजिए, शेयरिंग कीजिए, साथ उन्हें बताइए कि ये एक रिश्ता आप लोग के साथ भी जुड़ा है. अच्छा जो ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने एक सवाल किया था कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी खानदान में या जो भी रिश्तेदार जानने वाले हैं रिलेटिव्स कहीं पे भी कोई ऐसा बंदा आपने देखा जो फौज में हाजिर सर्विस हैं या जो शहीद हो चुके हैं, तो उनको ज़रूर ये उनका नाम मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी उनका नाम. भी आप खुद भी आ सकते हैं अगर आप सुन रहे हैं जो भी हमारे हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि सब तो नहीं है, कोई छुट्टी पर भी आ जाते हैं तो ज़रूर होंगे. और सबसे पहले मैं अपने जो जानने वालों से उनके अभी नाम शामिल करना चाहूंगी. मुझे मैसेज करके कहा गया था कि नाम ज़रूर शामिल कीजिएगा, तो जी इनका भी नाम शामिल करते हैं कि अल्लाह पाक उन शहीद के जो शहीद हुए हैं अभी रिसेंटली, वो शहीद हुए थे फिदा हुसैन भाई, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बीवी बच्चों को, उनके घर वालों को सब्र दे. ओके जी जनाब, तो अभी कुछ कमेंट्स हैं सोची प्रोग्राम में एक दो शामिल कर देती हूँ. अच्छा जी हमें इन्होंने ज्वाइन किया है, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मीरपुर पास हैं, कोमल खान शो अच्छा है बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने पसंद किया, आप लोगों की ही पसंद है जो मैं बार बार आप लोगों के पास आती हूँ प्रोग्राम करती हूँ. अच्छा जी और इन्होंने मीरपुर पास से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद खान ने, और इसके साथ हैं जमाल, कन्हार सरदार, मोहम्मद अली, इन सब के उन्होंने नाम लिखे हैं. तो जी बिल्कुल मैंने सबके नाम भी शामिल कर दिए प्रोग्राम में, अगर कोई रह गया हो तो माजरत. अब्दुल रजाक साहब ने जो है ये हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं इस वक्त. अच्छा जी इसके साथ हमारे लिसनर्स हैं वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कैसी हो, कराची से मसरूर अहमद. तो जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. साथ में लड़का है कि कोमल जी काफ़ी दिन बाद आपका आपको सुन रहा हूँ, बहुत खुशी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों ने पसंद किया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अभी प्रोग्राम में मेरे साथ ही होंगे और प्रोग्राम सुन रहे होंगे. अच्छा जी इसके साथ ही एक अच्छा सा ट्रैक जो है मैं आप लोगों के साथ शामिल करती हूँ प्रोग्राम में आवाज़ का रिश्ता में, एक और आवाज़ के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं जी. बिल्कुल ये कोतलिन बलोच की खूबसूरत आवाज़ में और उमेर जसवाल की आवाज़ में कोक स्टूडियो का सॉन्ग समी मेरी में जो है प्ले कर चुकी हूँ अपने लिसनर्स के नाम. जी आवाज का रिश्ता आपका और हमारा जो रहेगा तकरीबन 7 बजे तक बरकरार.

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

गज़ा वालल फलस्तीनी इलाइक़े जो हिसो आहे मुनसफ़ाणी ऐं उन जो वाहिद रस्तो ब रियासती हल आहे। फलस्तीनियुनि खे बेदख़ल करण जूं कोशिशूं खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम खे नुक़सान पहुचाए सघनि थियूं। इसराइली वज़ीरनि पारां फलस्तीनियुनि जी गज़ा मां नेकालीअ ते पाकिस्तान समेत 8 मुल्कनि जी मज़म्मत। गॾियल पधराई में ॼाणायो वियो आहे त फलस्तीनियुनि जी जबरी बेदख़ली जी कोशिश खे रद्द कयो वञे थो। अहिड़ी कोशिश आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं गॾियल अरब अमारातुनि पारां गॾियल पधराई जारी। नव मई केस में इश्तिहारी करार ॾिनल पीटीआई अॻवान हमाद अज़हर मुल्तान मां गिरफ़्तार। मुल्तान पुलिस हमाद अज़हर खे लाहौर पुलिस हवाले करे छॾियो। हमाद अज़हर 9 मई वारनि केसनि में घुरबल हो।

वतन जी अजीम सपूतन के सलाम। सिंध समेत मुल्क में अज इकहठो योम दिफा ए योम शोहदा मल्हायो पियो वञे। नंढन तोड़े वॾनि शहरनि में सेमिनारूं तकरीबूं बि कोठायूं वयूं। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां योम दिफ़ा जे मौके ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त 6 सेप्टेम्बर असांजी क़ौमी तारीख़ में हिकु यादगार मक़ाम रखे थो। हीउ ॾींहुं असांखे गाज़ियुनि ऐं शहीदनि जे अज़ीम क़ुर्बानीनि जी यादि ॾिराए थो। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जी बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानीनि जी यादि ॾिराए थो। क़ौम तरफ़ां गाज़ियुनि ऐं शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। बिलावल भुट्टो चयो त वतन लाइ जान ॾींदड़ वतन जे बहादुर सिपाहियुनि खे कॾहिं बि क़ौम न विसारींदी। योम दिफ़ा ते मज़ार क़ाइद ते गार्ड्स जी तब्दीली जी तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स जे कैडेट्स जी मज़ार क़ाइद ते शानदार परेड। गार्ड्स जूं ज़िमेवारियूं बि संभाले वरितियूं। तकरीब खे ख़िताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो पाक फिज़ाइया हर ॾुखे घड़ीअ में क़ौम जी उमेदनि ते हमेशह पूरो लथी आहे। फिज़ाई हदुनि जो दिफ़ा पाक फिज़ाइया जे मज़बूत हथनि में आहे। हर ॾुखी घड़ीअ में पाक फिज़ाइया पंहिंजूं ख़िदमतूं पेश कयूं आहिनि। योम दिफ़ा जे मौके ते हथियारबंद फ़ौज जो शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत। ISPR पारां जारी कयल बयान मूजिबि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ़ ऐं एयर चीफ़ पारां शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयो वियो। हथियारबंद फ़ौज जी गाज़ियुनि खे बहादुरी ऐं साबित क़दम रहण ते बि सलाम पेश कजे थो। 6 सेप्टेम्बर क़ौमी इतिहादु जुरत, बहादुरी ऐं अज़म जी लाज़वाल अलामत आहे। 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी क़ौम वतन जी दिफ़ा लाइ मुतहद थी दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो। शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसुल लाइ मशले राह आहिनि।

वतन के अजीम सपूतन के भेटा पेश करने लाए मुख्तलिफ शहर में रैलियों और तकरीबों हैदराबाद सखर मिठी कंदकोट सामारो बावड़ो रोहड़ी टंडो आदम टंडो गुलाम हैदर तंगवाणी जोही और बेन शहर में रैलियों कढ़ी पाक फौज के शहीद के भेटा पेश की हुई। नौ सूबो कें भी सूरत में कबूल ना है सिंध एक हुई एक आहे ए हमेशा एक ही रहंदी जुल्फकार जूनियर सेवन में मीडिया से गालंदे चयो तो सिंध के विरांगे की कें भी कोशिश के सिंध जा मानू कबूल न कंदा वफाक सिंध जो पानी चोरी करने लाए जलालपुर कैनाल समेत बया वाहन जा मनसूबा ठाण चाहे तो सिंध में एचआईवी एड्स संगीन मसलो बणजी वो है।

सिंध असांजी धरती आहे ऐं उन जो फ़ैसिलो करण जो अख़्तियार सिर्फ़ सिंध जे अवाम खे आहे। सिंध विरहाइण वारी कंहिं बि साज़िश जी सख़्तु मुखालफ़त कंदा रहंदासीं। मौलाना राशिद महमूद सुमरे जी उमर कोट में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। मौलाना राशिद महमूद चयो त असेंबलीअ में वॾियूं तकरीरूं कंदड़नि खे चवां थो त पहिरियां यूनियन काउंसिल ॾांहुं ॾिसनि। फॉर्म 47 ज़रिए असेंबलियुनि में अचण वारे अमल खे असां कंहिं बि सूरत में क़बूल नथा कयूं। पीटीआई जी स्ट्रीट मुहिम जारी। केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी जो काफ़िलो टंडो अलियार पहुतो। लतीफ गेट वटि कारकुननि पारां आजियां। सोहेल आफरीदी चयो त असांजी रस्ता रोक करे रोडनि ते खॾा खोटिया पिया वञनि ऐं कंटेनर्स लॻाया विया आहिनि। सिंध जो माण्हू कॾहिं बि महिमाननि जी रस्ता रोक क़बूल न कंदो। अहिड़ियूं हरकतूं असांखे मंज़िल खां पोइते हटाए नथियूं सघनि। कराचीअ में शराइ क़ाइदीन ते जलसे खां अॻु MA जना रोड कंटेनर्स लॻाए बंदि। नुमाइश चोरंगी खां सोल्जर बाज़ार वेंदड़ रोड खे बि बंदि कयो वियो। क़ाइदे आज़म जी मज़ार जे चइनी पासे घिटियूं बि कंटेनर्स लॻाए बंदि कयूं वियूं।

डिगड़ीअ में अवामी तहरीक पारां सिंध खे विरहण वारनि बयाननि ख़िलाफ़ मार्च अॻवाण चयो त सिंध जी ज़मीननि ऐं मैदनी वसीलनि ते कब्ज़ा जलालपुर कैनाल ऐं डेमन जी तामीर कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। हज़ारनि सालनि जी क़दीम सकाफ़ती ॿोली ऐं तहज़ीब रखंदड़ सिंध धरतीअ खे टोड़ण जी कोशिश थी रही आहे।

0: कोटड़ीअ में मालबरदार ट्रेन हादसे जो शिकार, 7 गाॾा पटड़ीअ तां लही विया, रेलवे मुलाज़िम फौत। रेलवे स्टेशन वेझो कोयले सां भरियल मालगाॾीअ जा 7 गाॾा पटड़ीअ तां लही विया, हादसे सबबु गाॾीअ में सवार रेलवे मुलाज़िम राजेश कुमार फौत थी वियो। 1000 टन कोयलो विञाइजी वियो। हादसे सबबु अपट्रेक खे नुक़सान, केतिरा ई फुट पटड़ी उखड़ी वई। ट्रेननि जी अचवञ मुअतल। कश्मीर में कुझु साल अॻु क़तल थियल नौजवान जे वारसनि वटि मेड मिंथ काफ़िलो पहुतो। धुरियुनि पारां काफ़िले खे मान ॾियण बाद 26 सेप्टेम्बर फ़ैसिले जी तारीख़ मुक़ररु। कलवड़ पाड़े वासी नौजवान कामरान मलिक खे संदसि टिन दोस्तनि बेदर्दी सां क़तल कयो हो। केस में जवाबदार फुरकान सुमरो, परवेज़ कोसो ऐं सईद बुरड़ो नामज़द थियल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आपने लिखना है एस के आर एंड अपना मैसेज जो टाइप करें देन सेंड कर दें 888-1 पर 888-1 पर आपने सेंड करना है. तो प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और अब आपका हमारा टाइम भी कुछ कुछ एंड की तरफ है, इख्तिताम की तरफ है. तो परेशान नहीं हुए, हर हफ्ते और इतवार आप लोगों के साथ होंगी शाम 5 से 7 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी साथ को बरकरार रखेंगे पूरे पूरे टाइम तक, मेरा साथ भी देंगे. अच्छा जी, तो आवाज़ का ताल्लुक है तो जी हम आवाज़ पर ही बात कर लेते हैं. अच्छा जी, तो एक शाम, आज की शाम जैसे हमने अपने शहदाओं के नाम की थी, अपने गाजियों के नाम की है, 6 सितंबर 1965 एक यादगार दिन था और बहुत से मतलब ऐसे लोग हैं जिनके अपने किसी के बाप, भाई, बेटा, शोहर उस जंग में शहीद हुए या अब उनके बच्चे होंगे यकीनन, क्योंकि एक नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता है, वो चल रहा है कि जो कल फौज में थे उनके बच्चे भी यकीनन फौज में ही जाते हैं. तो मैंने बार बार कहा था कि अगर आप लोग के साथ कोई ऐसा बंदा, कोई रिश्तेदार, दोस्त, कोई शहीद हुआ है या हाजी होकर लौटे हैं तो जरूर उनका नाम मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए, प्रोग्राम में शामिल जरूर करूंगी क्योंकि उनका राइट बनता है पता चले कि भाई आप भी एक ऐसे घराने से, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. जी बातें होती रहेंगी साथ में, एक अच्छा सा जो है सूफिया काम जिसे कहते हैं कव्वाली हदीका कियानी की खूबसूरत सी आवाज में मैं प्ले कर रही हूँ जी. बिल्कुल आप सबके नाम है आवाज या रिश्ता में एक और ट्रैक अपने तमाम सुनने वाले, तमाम लिसनर्स के नाम. और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करेंगे
1: भी पर करा.
0: बिल्कुल हदीका कियानी की खूबसूरत सी आवाज में जाने दिल का हाल क्या होगा जी. बिल्कुल जाने दिल का हाल क्या होगा, जिसके दिल पर गुजरती है उसे ही पता होता है.

वो गिद्ध थे जो शेरों का मुकाबला करने आए थे और हार कर गए थे। तो जी बिल्कुल प्रोग्राम में इस वक्त टाइम हो चुका है 6:25 PM, तो हमारे पास अब टाइम कम कम रह गया है, थोड़ी सी बातें इसी पे चलते हैं। अच्छा जी, तो

0: शहीदों के खानदान से होते हैं और इनकी कदर करें। जो क्या बातें करते हैं, मैं उनसे कहूँगी अगर इतनी हिम्मत है तो आप चले जाएं उनकी जगह, खड़े तो होकर दिखा दें इन जगहों पे। कोई नहीं आता, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत दिल जिगर चाहिए होता है इंसान को। आगे जी लिसनर्स, तो कुछ एक दो कमेंट्स है वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ, और साथ साथ आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 8881 पर। बार बार बता रही हूँ भाई, 8881 पर मैसेज ज़रूर किया करें मुझे। अच्छा जी, इसके साथ ही नज़ीर खोसम है और इन्होंने कुछ भेजा है, चलें जी इनके बारे में मैं पढ़ लेती हूँ इन्होंने क्या लिखा है और ये कहाँ से हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं। और अच्छा जी ये कह रहे हैं, जिंदगी में किसी को भी बुरा मत समझें। अच्छा वो कह रहे हैं कि जिंदगी में किसी को भी बुरा मत समझें, अच्छे लोग खुशी देते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देते हैं, घटिया लोग सबक देते हैं और बेहतरीन लोग अच्छी खूबसूरत यादें बन जाते हैं। वाह बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात कही है आपने। तो जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये वाकई हर इंसान का एक तजुर्बा होता है जो उसे कुछ सीखता है उस मतलब कि देखें आपके अल्फाज थे लेकिन आवाज़ का ज़रिया, आपके अल्फाज को आवाज़ मैंने दी है। इसी तरीके से आप लिखते रहा करें, भेजते रहा करें, मैं शामिल करूँगी कि बिल्कुल यही बात सही है कि अच्छे लोग हमें जो है अच्छी यादें देते हैं और खुशी देते हैं, जबकि जो बुरे होंगे ना, मतलब बुरे इसलिए बनते हैं कि वो आपके साथ गलत कर देते हैं, वो गलत करते हैं, वो जानते हैं वो गलत कर रहे हैं फिर भी आप लोगों के साथ बुरा रवैया रखते हैं, फिर जाहिर सी बात है हमारा दिल नहीं करता उनसे बात करना मिलना, क्योंकि बुरे लोग ना हमें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तजुर्बा दे जाते हैं, साथ साथ एक इतना बड़ा सबक देकर जाते हैं कि इंसान नेक्स्ट टाइम ना उन चीज़ों को नहीं सोचता। अच्छा जी, तो प्रोग्राम में टाइम हो चुका है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आप लोगों के साथ।
1: It's 6:30 PM. This time check.
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जीए एफएम नेटवर्क पर यौम ए दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

होंगी कि इनको इनकी फैमिलीज को हमेशा दुआ में याद रखें। ये 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन था। इस दिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी और इंडिया के बुज़दिल होंगी बुज़दिल इंडिया को जो मुँह तोड़ जवाब दिया था हमारे पाकिस्तान अफवाज ने। कम ज़राए थे, उनके पास सामान वसाइल कम थे, लेकिन उनका जज्बा जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा था, जिस पर उन्होंने डट कर लड़ा। सिर्फ हमारी जो भी हमारी बर्री बहरी फिजाई अफवाज थी, तीनों ने डट कर मुकाबला किया था, इंडिया को मुँह तोड़ जवाब भी दिया था इसके ऊपर। और ये तारीख में, दुनिया की तारीख में लिखी गई है ये जंग पाकिस्तान की। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हमारे जवान सरहदों पर महाजों पर अपने मुल्क का दिफा करते आए, हर मकाम पर दुनिया में अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। हर उस शख्स ने जहाँ जहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जहाँ भी वो पाकिस्तान के लिए शहीद हो गए। कुछ ऐसे गुमनाम शहीद हैं, सिपाही हैं हमारे जिनका नहीं पता, उनकी फैमिली सालों से इंतज़ार कर रही है पर उनका कुछ नहीं पता, तो उन्हें भी दुआओं में याद रखें। अगर वो जिंदा है तो गाजी होकर लौटें, और अगर शहीद हो गए तो उनके घर वालों को सब्र दे अल्लाह पाक और उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे। शहीद का हिसाब नहीं है, लेकिन उनका मुकाम ही अलग है। तो जी जनाब, और जाते जाते में एक अच्छा सा ट्रैक, अच्छा सा मतलब मिली नखबा अपने जवानों के नाम भी करके जाऊंगी, अपने शहदाओं के और गाजियों के नाम होगा। शहीद की कहते हैं ना कि शहीद की मौत कौम की याद होती है। बिल्कुल यही मिसाल, और यही मिसाल 1965 की जंग में कायम हुई थी और उन्होंने साबित करके दिखाया था कि ये हकीकत है। और हम ये दिन ना भूले हैं, ना भूलेंगे कभी। और जिसे हमें हमारे बड़ों के ज़रिए इस दिन के बारे में मालूम है, किताबों में पढ़ा, और अब तो दौर इतना एडवांस है कि हर चीज़ के बारे में हर जगह मीडिया पे आप लोग सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बहादुर और बहुत ताकतवर फ़ौज है। ओके जी जनाब, तो आवाज़ के रिश्ता में अपनी आरजे कोमल को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हर हफ्ते और इतवार को वीकेंड पर आप लोगों से इसी शो में आवाज़ का रिश्ता जुड़ जाएगा मेरा आप लोगों के साथ। और कोशिश कीजिए कि आप लोग ही मेरे साथ आ जाएं और चाय भी लेकर आइएगा, क्योंकि मैं भी अब चाय एंजॉय कर रही हूँ। मेरे पास लेट आई, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, बट बहुत अच्छा टाइम गुजरा आप लोगों के साथ। और जिनके कमेंट्स या कुछ ऐसी रहती, अच्छा जी इकबाल लाशारी हैं ये हमें सुन रहे हैं, सोनू खान लाशारी मीरपुर खास से ये हमें सुन रहे हैं।

नव मई केस में इश्तिहारी करार दिनल पीटीआई अगवान हमाद अजहर मुल्तान मां गिरफ्तार। मुल्तान पुलिस हमाद अजहर के लाहौर पुलिस हवाले कर छोड़ो। हमाद अजहर नव मई वाले केसन में घुर्बल हो।

0: वतन के अजीम सपूतन के सलाम। सिंध समेत सजी मुल्क में अज इकठो योम दिफा योम शोदा मल्हायो पियो वञे। नंढन तोड़े वॾनि शहरनि में सेमिनार तकरीबूं कोठाए रैलियूं कढी वतन जे दिफ़ा लाइ जान कुर्बान कंदड़ शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे भेटा पेश कई वई। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म पारां योम दिफ़ा जे मौक़े ते पाक फ़ौज शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश। सदर चयो त 6 सेप्टेम्बर असांजी क़ौमी तारीख़ में यादगार मुक़ाम रखे थो। हीउ ॾींहुं असांखे गाज़ियुनि ऐं शहीदनि जी अज़ीम क़ुर्बानीनि जी यादि ॾिराए थो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु हो त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जी बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानीनि जी यादि ॾिराए थो। क़ौम तरफ़ां गाज़ियुनि ऐं शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। पाकिस्तान अमुन इस्तेहकाम लाइ फ़ाल किरदारु अदा कंदो रहंदो। बिलावल भुटो चयो त वतन लाइ जान ॾींदड़ वतन जे बहादुर सिपाहियुनि खे कॾहिं बि क़ौम न विसारींदी। योम दिफ़ा ते मज़ार क़ाइद ते गार्ड्स जी तब्दीलीअ जी तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स जे कैडेट्स जी मज़ार ते शानदार परेड।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया। पाक फौज को सलाम।

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दुश्मन के लिए तबाही, पाक फौज का हर सिपाही, 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज,
2: ढाडो सुठो
1: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।

आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया। पाक फौज को सलाम।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।

आप सुन रहे हैं जीए एफएम नेटवर्क पर यौम ए दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु मां आहियां गुलाब खान भेण। सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध हिकु रहंदी, को बि हिसो धार या वफ़ाक हवाले न थींदो। सिंध असेंबली मां नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि ख़िलाफ़ ठहिरा मंज़ूर, मुतहदा जो वॉकआउट। सिंध में स्ट्रीट क्राइम रोकण लाइ हिकमत अमली तयारु, SSPs खां आदि रुहारियुनि जो रिकॉर्ड तलब। सिंध में रबीअ जी मुंद दौरान आबादगारनि खे DAP भाण ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो। पीपल्स पार्टी जो 12 सेप्टेम्बर ते सॼे सिंध में सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो ऐलान। मेरठ जी लताड़ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़नि ख़िलाफ़ धमकियूं, सूमर ते हर हाल में मार्च थींदो अॻवाण। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध जी वहदत, वफ़ाक जी मज़बूती ऐं क़ौमी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जी ज़रूरत आहे।

0: सिंध असेंबली सिंध के मौजूदा इलाक़नि सरज़मीन तालकनि ज़िलनि ऐं डिवीज़ननि खे सिंध जो अणटड़ हिसो करार ॾिंदे सिंध जी वहदानियत जे कंहिं बि क़िस्म जे विरहाङे खे मुकमल रद्द कंदे वादे कयो आहे त सिंध खे विरहाइण उन जूं मौजूदा इलाइक़ाई हदूं तब्दील करणी आहे। सिंध जी सरज़मीन मां को नओं सूबो क़ाइमु करण लाइ पेश कयल हर तजवीज़ मनसूबे स्कीम या आइनी बंदोबस्त खे उन जो नालो या नोयत कुझु बि हुजे ऐवान उन्हनि खे रद्द करे थो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कड़ो पारां पेश कयल ठहरा अक्सर ते राय सां मंज़ूर मुतहदा मेंबर बाइकाट करे हलिया विया। उन हवाले सां काल्ह सिंध असेंबली जे इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह जे सदारत हेठि शुरू थियो। इजलास दौरान अल्तवा वारी रिथ ते बहस दौरान ख़िताब कंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंधी असेंबली सूबे जी विरासत ऐं नवनि सूबनि या इंतज़ामी इकाइनि जे क़याम जूं सभई ॿाहिरियूं कोशिशूं गॾियल तौर ते रद्द कंदी। हिकु तारीख़ ठहराउ मंज़ूरु कयो आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध जे जाग्राफियाई हदुनि ऐं कंहिं बि क़िस्म जी फेरफार या टुकड़ा करणु कंहिं बि सूरत में क़बूल जोॻो अमल न आहे। हुन चयो त पाकिस्तान ठाहिण जे सूबो सिंध जो हथ सभ खां मथे हुयो। सिंध सभ खां अॻु 1938 में क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जनाह जे सदारत हेठि कराची जे जलसे में उहो ठहरा पास कयो, जेको 23 मार्च 1940 जे लाहौर वारे पाकिस्तान जे ठहरा जो बुनियादु बणियो। हुन ॾुख जो इज़हार कयो त बार बार पाकिस्तान खे बचाईंदड़ सूबे सिंध ते ई इल्ज़ाम तराशी कई वेंदी आहे। हुन क़ौमी असेंबलीअ खे ख़बरदार कयो त आइन जे तहत को बि सिंध जा टुकड़ा करण जी ॻाल्हि बि नथो करे सघे। आई जी सिंध जावेद आलम मोड़ो जे सदारत हेठि सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सूबे अंदर अमन अमान जे मजमूई सूरत हाल ऐं ॾोहनि ख़ासि तौर ते स्ट्रीट क्राइम जी रोकथाम बाबति आला सतह ते इजलास थियो। एडिशनल आई जी कराची आज़ाद खान शहर में अमन अमान ऐं ॾोहनि ख़ासि तौर ते स्ट्रीट क्राइम जी मजमूई सूरत हाल बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी। आज़ाद खान चयो त स्ट्रीट क्राइम में मुलविस ग्रोहनि ऐं उन्हनि जे सहूलतकारनि ख़िलाफ़ टारगेटेड कार्रवाइयूं जारी आहिनि, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ ॾोहनि में मुलविस आदि जवाबदारनि जी डेटा गॾु करे उन्हनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ मरबूत हिकमत अमली अख़्तियार कई वई आहे। आई जी सिंध जावेद आलम ओढो समूरनि ज़िलनि खे स्ट्रीट क्राइम जे रोकथाम जे लाइ कार्रवाइयुनि खे वधीक तेज़ ऐं असराइतो बनाइण जी हिदायत कई। हुन चोरी थियल मोटरसाइकिल फोन ख़रीद कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई यकीनी बनाइण ऐं समूरे ज़िलनि में पुलिस ट्रोलिंग पिकेटिंग ऐं स्नैप चेकिंग खे वधीक असराइतो बनाइण जूं हिदायतूं जारी कयूं। आई जी सिंध स्पेशल ब्रांच खे पुलिस पेट्रोलिंग ऐं सिक्योरिटी कदमनि बाबति आफिसरनि खे बरवक़्त आगाह रखण जी हिदायत कई। जावेद आलम ओढो समूरनि ज़िलनि खे आदि ॾोहारियुनि घुर्बल ऐं इश्तिहारी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयुनि खे वधीक तेज़ ऐं असराइतो बनाइण जी हिदायत कई। हुन चयो त ड्यूटीअ में गिफ़रत ऐं कोताही कंदड़ आफिसरनि ऐं अहलकारनि ख़िलाफ़ सख़्तु खाते वारी कार्रवाई कई वञे। आई जी सिंध शहरनि जे दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते AVLC जी निगरानीअ में रहनुमाई हेठि आफिसरनि ऐं अहलकारनि खे मुक़ररु करण जी हिदायत कई। आई जी सिंध समूरनि DIGs खे पंहिंजे लाॻापियल SSPs सां अमन अमान ऐं ॾोहनि जी रोकथाम बाबति बाक़ाइदगीअ सां इजलास मुनक़िद करण जी पिणु हिदायत कई। इजलास में एडिशनल IG कराची आज़ाद खान, एडिशनल IG CTD, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, DIG हेडक्वार्टर्स, DIG एस्टेब्लिशमेंट ऐं स्पेशल ब्रांच, AIG ऑपरेशंस, SSP AVLC, SSP SIU, SSP कियामाड़ी ऐं SSP DIT शिरकत कई। जॾहिं त ज़ोनल ऐं डिवीज़नल DIGs ऐं ज़िले SSPs वीडियो लिंक ज़रिए इजलास में शरीक थिया। सिंध हुकूमत पारां रबीअ जी मुद साल 2026-27 दौरान आबादारनि खे DAP भाण ते सब्सिडी ॾियण बाबति तजवीज़ुनि ते ग़ौर जारी करे छॾियो। उन हवाले सां सिंध काबीना जे ज़राअत बाबति क़ाइमु ज़ेली कमेटी जो इजलास ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर जे सदारत हेठि थियो, जंहिंमें आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो ऐं सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर ॻाल्हाईंदे चयो त आबादकारनि खे रिलीफ़ फ़राहम करण लाइ मुख़्तलिफ़ तजवीज़ूं ऑप्शन्स जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। ज़ेली कमेटी जे मेंबरनि खां DAP सब्सिडीअ बाबति वधीक तजवीज़ूं पिणु तलब कयूं वयूं आहिनि। हुन चयो त DAP सब्सिडीअ जे मामले ते ज़ेली कमेटीअ जा वधीक हिकु या ॿ इजलास पिणु मुनक़िद कया वेंदा। आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त ईंदड़ इजलासनि में मेंबरनि जी तजवीज़ ऐं सिफ़ारिश खां हतमी शिकिल ॾिनी वेंदी, जॾहिं त ज़ेली कमेटीअ जूं हतमी सिफ़ारिशूं वधीक इजलास खां पोइ मंज़ूरीअ लाइ सिंध काबीना आॾो पेश कयूं वेंदियूं। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा चयो त आबादकारनि खां वध रिलीफ़ फ़राहम करणु सिंध हुकूमत जी तरजीह आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधी असेंबली में सिंध के विराग के खिलाफ ठहराव मंजूर थियण बावजूद वफाकी वजीर तरफा नवन सूबन इंतजामी यूनिटन निज़ाम बाबत दिनल बयान की सख्त लफ्जन में मजम्मत कदे अड़न बयान के वफाक तरफा सूबे के आइनी हैसियत में मुदाखलत करार दिनों है। पीपल्स पार्टी वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतालबो किया है तो वफाकी वजीर के बयान जो नोटिस वी अड़ी बयानबाजी बंद कराई वे। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खबरदार किया है जैसे वफाकी हुकूमत आइन में तरमीम करना चाहे थी तो वफाक वट पार्लियामेंट में ब भांगे टे अक्सरियत मौजूद ना है। तंहिं करे जमहूरियत जी तसलसुल खे कमज़ोर न कयो वञे ऐं मुल्क जी सालमियत सां खेॾण जी कोशिश न कई वञे। पीपल्स पार्टी चयो त पार्टी मुल्क में जमहूरियत जे तसलसुल चाहे थी पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणण न ॾींदी। तंहिं करे सूबनि जे आइनी हैसियत में मुदाख़लत बंदि कई वञे। उहो मुतालबो छंछरु ॾींहुं पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खेड़े जे सदारत हेठि थियल इजलास में कयो वियो। इजलास में सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, पीपल्स पार्टी जा समूरा डिवीज़नल सदर जिनवी ज़ियालो सलंजार, जाम इकरामल्ला ऐं ॿिया शामिल हुआ। समूरनि ज़िले सदरनि ऐं मातहत विंग्स जी सूबाई सदरनि शिरकत कई। इजलास में सिंध असेंबली जे ठहराउ खां पोइ वफ़ाकी वज़ीरनि जे बयाननि ऐं सिंध जी सियासी सूरत हाल जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में चयो त पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत जो तसलसुल चाहे थी पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणण न ॾींदी। इजलास में ईंदड़ हफ़्ते 12 सेप्टेम्बर ते सिंध जे समूरनि तालके हेडक्वार्टर्स में सिंध असेंबलीअ तरफ़ां पीपल्स पार्टी जी कोशिशुनि सां सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ क़रारदाद मंज़ूर करण ते भेटा पेश करण ऐं सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शंस कमेटी जे एहतजाजी कैंप काल्ह 43 ॾींहं बि जारी रही। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटीअ जी कन्वेनर शागिर्द अॻवान रबीउल्ला मस्तोई एहतजाजी कैंप ते साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मेरिट जी लताड़ ऐं करप्शन ख़िलाफ़ नसीब नगर चौक खां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हेड ऑफिस साम्हूं कैंप ताईं रैली ऐं शम्सुल उलमा दाऊद पुटो लाइब्रेरीअ खां मेरिट जो जनाज़ो कढण खां पोइ हाणे 7 सेप्टेम्बर ते सिंध यूनिवर्सिटी खां प्रेस क्लब जाम शुरू ताईं रैली कढी वेंदी। हुन चयो त मूंखे मक़सद तां हटाइण लाइ धमकियूं मिलियूं रहियूं आहिनि ऐं घणनि ई माण्हुनि खे मुंहिंजे पोयां बि पछो वियो आहे। हुन चयो त पंहिंजनि मुतालबनि खां पोइ हिते न हटंदासीं। हिकु महीने खां वधीक अरसो गुज़री वियो आहे जिदोजहद मेरिट इंसाफ़ ऐं सिंध जे शागिर्दनि जे हक़नि लाइ जारी रहंदी। असां सिंध जे हर शागिर्द जी आवाज़ जी हैसियत सां जिदोजहद जे मैदान ते बीठा आहियूं। अल्टीमेटम खां पोइ ईंदड़ एहतजाजी तहरीक जो तरीक़ो हालतुनि मुताबिक़ तय कयो वेंदो। CM हाउस बाईपास कराची या प्रेस क्लब हुजे, असां पंहिंजे आवाज़ खे हर लाॻापियल फोरम ते खणी वेंदासीं। जुमे ॾींहुं सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे एहतजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि जे वफ़द अची शागिर्दनि सां यकजहत जो इज़हार कयो। स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे अॻवाननि वजाहत हिंगोर जो, फ़ख्र ज़मां खुहारो, सिकी लधो चांडियो, हिमायत कंदड़ धुरनि जो थोरा मञा। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल अहिड़े मरहले में दाख़िल थी चुकी आहे जिते सियासी इख़्तिलाफ़नि खे जमहूरियत जो हिसो सम्झंदे बि वफ़ाक़ी ढांचे, सूबाई वहदतुनि ऐं पार्लियामानी निज़ाम बाबति वधंदड़ बहस खे संजीदगीअ साम्हूं ॾियणो ज़रूरी आहे। ख़ासि तौर ते सूबनि जी विरासत बाबति बहस जेकॾहिं सियासी एजेंडा जो हिसो बणिजी वञे त उन जा असर रुगो हिकु सूबे ते महदूद न रहंदा। अहिड़ी सूरत हाल में सियासी कुवतुनि खे रदे अमल बदिरां ॻाल्हियुनि ऐं आइनी रस्ते खे तरजीह ॾियणु घुरिजे। बलोचिस्तान जी सूरत हाल खां पोइ सिंध में सूबाई विरासत बाबति बहस ॿीहर क़ौमी सियासत जो अहम मौज़ू बणिजी रहियो आहे। सिंध लाइ सभ खां अहम ॻाल्हि उहा आहे त इंतिज़ामी सहूलियतुनि, वसीलनि जे मुनसफ़ाणे विर्छ ऐं अवामी मसइलनि जे हल बाबति जाइज़ सवालनि खे सिंध जे तारीख़ी, सकाफ़ती, सियासती ऐं आइनी हैसियत खे कमज़ोर करण वारी सोच खां अलॻि रखियो वञे। इंतज़ामी सुधारा हिकु अलॻि मामिलो आहे, जॾहिं त कंहिं सूबे जी वहदत ऐं आइनी हैसियत खे मुतासिर करणु ॿी ॻाल्हि आहे। सिंध पाकिस्तान जो वफ़ाक जे अहम वहदतुनि मां हिकु आहे। सिंध जी अवाम खे पंहिंजे सियासी, इंतज़ामी ऐं वसीलनि बाबति हक़नि ते ख़दशा आहिनि, जिन खे नज़रअंदाज़ करण बदिरां क़ौमी सतह ते संजीदा ॻाल्हि ॿोल थियणु घुरिजे। सिंध जी वहदत बाबति को बि फ़ैसिलो सियासी नारेबाज़ी या बंदि कमरे जी ॻाल्हियुनि सां न, पर पार्लियामेंट, वसी सियासी इतफ़ाक़ राय ऐं आइनी तरीक़ेकार सां थियणु घुरिजे।
1: उन पसे मंज़र में एक जामिया कौमी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत शिद्दत से महसूस थे थी जैमें हुकूमती ए मुखालिफ़ धुर से गड समूरन सूबन जो सियासी पार्टियों पार्लियामानी कुवतूँ आइनी माहिर शामिल होजन मकसद के एक जमायत के फ़ायदो दियण न पर वफाक सूबन के हकन ए मुल्क के सियासी इस्तेहकाम बाबत गडियल उसूल तय करण हुए मुल्क के सीनियर सियासी क्यादत खास तौर पर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान ए मियाँ नवाज शरीफ जड़न तजुर्बेकार अगवाणन वट गाल मुफाहमत जो डिघो तजुर्बो मौजूद है सदर आसिफ अली जरदारी पाँच सियासत सफर में मुफाहमती सियासत लाए सुता वन था मौजूदा सूरत हाल में भी मुख्तलिफ़ सियासी कुवतुन के एक मेज से आयण में किरदार अदा कर सकन था पाकिस्तान जो आलमी किरदार पिण अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ियल है सऊदी अरब ए तुर्की से वधंदड़ सहकार इलाकई मामलन में पाकिस्तान के फाल किरदार लाए जरूरी है त मुल्क अंदर सियासी निज़ाम एतमाद तसलसल आइनी उसूलन से कायम हो मुसलसल सियासी चिकताण सूबाई वहदतुन बाबत गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क की मजमूई तासुर के मुतासर कर सके थी सिंध समेत समूरन सूबन के उहो भी यकीन दियारण जरूरी है त सदन आइनी हैसियत वसीलन सियासी हकन बाबत फैसला के बंद कमरे में न थींदा जैकड़े मुस्तकबिल में इंतजामी यूनिटन बाबत का तजवीज़ सामू अचे थी त उन ते वसी सियासी इतफाक़ राय अवामी रजामंदी आइनी घुर्जन तहती गौर करण घुर्जे पाकिस्तान के नई सियासी महाज आराई का वधिक मुफाहमत आइनी तसलसल इदारन की मजबूती की जरूरत है सिंध जो वहदतू मुल्क की कमजोरी न पर पाकिस्तान की वफाकी ताकत जो हिस्सो आन सिंध के मजबूत करण उन आइनी हकन के तहफुज करण ही वफाक के मजबूत करण जो रस्तो है इन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिंदा इजाजत अल्लाह निगहबान
2: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8
4: दुश्मन के लिए तबाही तबाही पाक फौज का हर सिपाही 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान पाक फौज को सलाम
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM नेटवर्क पर यौम ए दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुन रहे हैं जीए एफएम नेटवर्क पर योमे दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंडअप सां गॾु, मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा। सिंध हिक रहंदी को भी हिस्सो धार या वफाक हवाले न थींदो। सिंध असेंबली मां नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि ख़िलाफ़ु ठहिरा मंज़ूर, मुतहदा जो वॉकआउट। सिंध में स्ट्रीट क्राइम रोकण लाइ हिकमत अमली तयारु, एस एस पी खां आदि रुहारियुनि जो रिकॉर्ड तलब। सिंध में रबीअ जी मुद दौरान आबादगारनि खे डी ए पी भाण ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो। पीपल्स पार्टी जो 12 सेप्टेंबर ते सॼे सिंध में सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो ऐलान। मेरठ जी लताड़ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़नि ख़िलाफ़ धमकियूं, सूमर ते हर हाल में मार्च थींदो अॻवाण। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध जी वहदत, वफ़ाक़ जी मज़बूती ऐं क़ौमी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जी ज़रूरत आहे।

0: सिंध असेंबली सिंध जे मौजूदा इलाइक़न सरज़मीन तालकन ज़िलनि ऐं डिवीज़नुनि खे सिंध जो अणटड़ हिसो करार ॾींदे सिंध जी वहदानियत जे कंहिं बि क़िस्म जे विरहाङे खे मुकमल रद्द कंदे वादे कयो आहे त सिंध खे विरहाइण उन जूं मौजूदा इलाइक़ाई हदूं तब्दील करणी या सिंध जी सरज़मीन मां को नओं सूबो क़ाइमु करण लाइ पेश कयल हर तजवीज़ मनसूबे स्कीम या आइनी बंदोबस्त खे उन जो नालो या नोयत कुझु बि हुजे ऐवान उन्हनि खे रदि करे थो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कड़ो पारां पेश कयल ठहरा अक्सर ते राय सां मंज़ूर मुतहदा मेंबर बाइकाट करे हलिया विया। उन हवाले सां काल्ह सिंध असेंबली जे इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह जे सदारत हेठि शुरू थियो। इजलास दौरान अल्तवा वारी रिथ ते बहस दौरान ख़िताब कंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध असेंबली सूबे जी विरासत ऐं नवनि सूबनि या इंतज़ामी इकाइनि जे क़याम जूं सभई ॿाहिरियूं कोशिशूं गॾियल तौर ते रद्द कंदी। हिकु तारीख़ी ठहराउ मंज़ूरु कयो आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध जे जाग्राफियाई हदुनि ऐं कंहिं बि क़िस्म जी फेरफार या टुकड़ा करण कंहिं बि सूरत में क़बूल जोगो अमल न आहे। हुन चयो त पाकिस्तान ठाहिण जे सूबो सिंध जो हथ सभ खां मथे हुयो। सिंध सभ खां अॻु 1938 में क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जनाह जे सदारत हेठि कराची जे जलसे में उहो ठहराउ पास कयो, जेको 23 मार्च 1940 जे लाहौर वारे पाकिस्तान जे ठहराउ जो बुनियादु बणियो। हुन ॾुख जो इज़हार कयो त बार बार पाकिस्तान खे बचाईंदड़ सूबे सिंध ते ई इल्ज़ाम तराशी कई वेंदी आहे। हुन क़ौमी असेंबलीअ खे ख़बरदार कयो त आइन जे तहत को बि सिंध जा टुकड़ा करण जी ॻाल्हि बि नथो करे सघे। आई जी सिंध जावेद आलम मोड़ो जे सदारत हेठि सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सूबे अंदरि अमन अमान जे मजमूई सूरत हाल ऐं ॾोहनि ख़ासि तौर ते स्ट्रीट क्राइम जी रोकथाम बाबति आला सतह ते इजलास थियो। एडिशनल आई जी कराची आज़ाद ख़ान शहर में अमन अमान ऐं ॾोहनि ख़ासि तौर ते स्ट्रीट क्राइम जी मजमूई सूरत हाल बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी। आज़ाद ख़ान चयो त स्ट्रीट क्राइम में मुलविस ग्रोहनि ऐं उन्हनि जे सहूलतकारनि ख़िलाफ़ टारगेटेड कार्रवाइयूं जारी आहिनि, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ ॾोहनि में मुलविस आदि जवाबदारनि जी डेटा गॾु करे उन्हनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ मरबूत हिकमत अमली अख़्तियार कई वई आहे। आई जी सिंध जावेद आलम ओढ़ो समूरनि ज़िलनि खे स्ट्रीट क्राइम जे रोकथाम जे लाइ कार्रवाइयुनि खे वधीक तेज़ ऐं असराइतो बनाइण जी हिदायत कई। हुन चोरी थियल मोटरसाइकिल फोन ख़रीद कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई यकीनी बनाइण ऐं समूरे ज़िलनि में पुलिस ट्रोलिंग पिकेटिंग ऐं स्नैप चेकिंग खे वधीक असराइतो बनाइण जूं हिदायतूं जारी कयूं। आई जी सिंध स्पेशल ब्रांच खे पुलिस पेट्रोलिंग ऐं सिक्योरिटी कदमनि बाबति आफिसरनि खे बर वक़्तु आगाह रखण जी हिदायत कई। जावेद आलम ओढ़ो समूरनि ज़िलनि खे आदि ॾोहारियुनि घुर्बल ऐं इश्तिहारी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयुनि खे वधीक तेज़ ऐं असराइतो बनाइण जी हिदायत कई। हुन चयो त ड्यूटीअ में गिफ़लत ऐं कोताही कंदड़ आफिसरनि ऐं अहलकारनि ख़िलाफ़ सख़्तु खाते वारी कार्रवाई कई वञे। आई जी सिंध शहरनि जे दाख़िली ऐं ख़ारजी रस्तनि ते AVLC जी निगरानीअ में रहनुमाई हेठि आफ़िसरनि ऐं अहलकारनि खे मुक़ररु करण जी हिदायत कई। आई जी सिंध समूरनि DIGs खे पंहिंजे लाॻापियल SSPs सां अमन अमान ऐं ॾोहनि जी रोकथाम बाबति बाक़ाइदगीअ सां इजलास मुनक़िद करण जी पिणु हिदायत कई। इजलास में एडिशनल IG कराची आज़ाद ख़ान, एडिशनल IG CTD, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, DIG हेडक्वार्टर्स, DIG एस्टेब्लिशमेंट ऐं स्पेशल ब्रांच, AIG ऑपरेशन्स, SSP AVLC, SSP SIU, SSP कियामाड़ी ऐं SSP DIT शिरकत कई। जॾहिं त ज़ोनल ऐं डिवीज़नल DIGs ऐं ज़िले SSPs वीडियो लिंक ज़रिए इजलास में शरीक थिया। सिंध हुकूमत पारां रबीअ जी मुंद साल 2026-27 दौरान आबादारनि खे DAP भाण ते सब्सिडी ॾियण बाबति तजवीज़ुनि ते ग़ौर जारी करे छॾियो। उन हवाले सां सिंध काबीना जे ज़राअत बाबति क़ाइम ज़ेली कमेटी जो इजलास ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर जे सदारत हेठि थियो, जंहिंमें आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो ऐं सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर ॻाल्हाईंदे चयो त आबादकारनि खे रिलीफ़ फ़राहम करण लाइ मुख़्तलिफ़ तजवीज़ूं ऑप्शन्स जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। ज़ेली कमेटी जे मेंबरनि खां DAP सब्सिडी बाबति वधीक तजवीज़ूं पिणु तलब कयूं वियूं आहिनि। हुन चयो त DAP सब्सिडी जे मामले ते ज़ेली कमेटी जा वधीक हिकु या ॿ इजलास पिणु मुनक़िद कया वेंदा। आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त ईंदड़ इजलासनि में मेंबरनि जी तजवीज़ ऐं सिफ़ारिश खां हतमी शिकिल ॾिनी वेंदी, जॾहिं त ज़ेली कमेटी जूं हतमी सिफ़ारिशूं वधीक इजलास खां पोइ मंज़ूरीअ लाइ सिंध काबीना आॾो पेश कयूं वेंदियूं। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा चयो त आबादकारनि खां वधि रिलीफ़ फ़राहम करणु सिंध हुकूमत जी तरजीह आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधी असेंबलीअ में सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूद वफ़ाक़ी वज़ीरनि तरफ़ां नवनि सूबनि इंतिज़ामी यूनिटनि ऐं निज़ाम बाबति ॾिनल बयाननि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे अहिड़नि बयाननि खे वफ़ाक़ तरफ़ां सूबे जे आइनी हैसियत में मुदाख़लत क़रार ॾिनो आहे। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खां मुतालबो कयो आहे त वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयाननि जो नोटिस वठी अहिड़ी बयानबाज़ी बंदि कराई वञे। पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत खे ख़बरदार कयो आहे त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत आइन में तरमीम करणु चाहे थी त वफ़ाक़ वटि पार्लियामेंट में ॿ भाङे टे अक्सरियत मौजूदु न आहे, तंहिं करे जमहूरियत जे तसलसुल खे कमज़ोर न कयो वञे ऐं मुल्क जी सालमियत सां खेॾण जी कोशिश न कई वञे। पीपल्स पार्टी चयो त पार्टी मुल्क में जमहूरियत जे तसलसुल चाहे थी पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणणु न ॾींदी, तंहिं करे सूबनि जे आइनी हैसियत में मुदाख़लत बंदि कई वञे। उहो मुतालबो छंछरु ॾींहुं पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खेड़े जे सदारत हेठि थियल इजलास में कयो वियो। इजलास में सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, पीपल्स पार्टी जा समूरा डिवीज़नल सदर जिनवी ज़ियालो सलंजार, जाम इकरामल्ला ऐं ॿिया शामिल हुआ। समूरनि ज़िले सदरनि ऐं मातहत विंग्स जी सूबाई सदरनि शिरकत कई। इजलास में सिंध असेंबली जे ठहराउ खां पोइ वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयाननि ऐं सिंध जे सियासी सूरत हाल जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में चयो त पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत जो तसलसुल चाहे थी पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणणु न ॾींदी। इजलास में ईंदड़ हफ़्ते 12 सेप्टेम्बर ते सिंध जे समूरनि तालुके हेडक्वार्टर्स में सिंध असेंबलीअ तरफ़ां पीपल्स पार्टी जे कोशिशुनि सां सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ क़रारदाद मंज़ूर करण ते भेटा पेश करणु ऐं सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शंस कमेटी जे एहतजाजी कैंप काल्ह 43 ॾींहं बि जारी रही। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटीअ जी कन्वेनर शागिर्द अॻवाण रबीउल्ला मस्तोई एहतजाजी कैंप ते साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मेरिट जी लताड़ ऐं करप्शन ख़िलाफ़ नसीब नगर चौक खां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हेड ऑफिस साम्हूं कैंप ताईं रैली ऐं शमसुल उलमा दाऊद पुटो लाइब्रेरीअ खां मेरिट जो जनाज़ो कढण खां पोइ हाणे 7 सेप्टेम्बर ते सिंध यूनिवर्सिटी खां प्रेस क्लब शुरू ताईं रैली कढी वेंदी। हुन चयो त मूंखे मक़सदु तां हटाइण लाइ धमकियूं मिलियूं रहियूं आहिनि ऐं घणनि ई माण्हुनि खे मुंहिंजे पोयां बि पछो वियो आहे। हुन चयो त पंहिंजनि मुतालबनि खां पोइ ते न हटंदासीं। हिकु महीने खां वधीक अरसो गुज़री वियो आहे, जिदोजहद मेरिट इंसाफ़ ऐं सिंध जे शागिर्दनि जे हक़नि लाइ जारी रहंदी। असां सिंध जे हर शागिर्द जी आवाज़ जी हैसियत सां जिदोजहद जे मैदान ते बीठा आहियूं। अल्टीमेटम खां पोइ ईंदड़ एहतजाजी तहरीक जो तरीक़ो हालतुनि मुताबिक़ तय कयो वेंदो। CM हाउस बाईपास कराची या प्रेस क्लब हुजे, असां पंहिंजी आवाज़ खे हर लाॻापियल फोरम ते खणी वेंदासीं। जुमे ॾींहुं सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे एहतजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि जे वफ़द अची शागिर्दनि सां यकजहत जो इज़हार कयो। स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे अॻवाननि वजाहत हिंगोर जो, फ़ख्र ज़मा खुहारो, सिकी लधो चांडियो, हिमायत कंदड़ धुरनि जो थोरा मञा। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल अहिड़े मरहले में दाख़िल थी चुकी आहे जिते सियासी इख़्तिलाफ़नि खे जमहूरियत जो हिसो सम्झंदे बि वफ़ाक़ी ढांचे, सूबाई वहदतुनि ऐं पार्लियामानी निज़ाम बाबति वधंदड़ बहस खे संजीदगीअ साम्हूं ॾियणु ज़रूरी आहे। ख़ासि तौर ते सूबनि जी विरासत बाबति बहस जेकॾहिं सियासी एजेंडा जो हिसो बणिजी वञे त उन जा असर रुगो हिकु सूबे ते महदूद न रहंदा। अहिड़ी सूरत हाल में सियासी कुवतुनि खे रदे अमल बदिरां ॻाल्हियुनि ऐं आइनी रस्ते खे तरजीह ॾियणु घुरिजे। बलोचिस्तान जी सूरत हाल खां पोइ सिंध में सूबाई विरासत बाबति बहस ॿीहर क़ौमी सियासत जो अहम मौज़ू बणिजी रहियो आहे। सिंध लाइ सभ खां अहम ॻाल्हि उहा आहे त इंतिज़ामी सहूलियतुनि, वसीलनि जे मुनसफ़ाणे विर्छ ऐं अवामी मसइलनि जे हल बाबति जाइज़ सवालनि खे सिंध जे तारीख़ी, सकाफ़ती, सियासती ऐं आइनी हैसियत खे कमज़ोर करण वारी सोच खां अलॻि रखियो वञे। इंतिज़ामी सुधारा हिकु अलॻि मामिलो आहे, जॾहिं त कंहिं सूबे जी वहदत ऐं आइनी हैसियत खे मुतासिर करणु ॿी ॻाल्हि आहे। सिंध पाकिस्तान जो वफ़ाक जे अहम वहदतुनि मां हिकु आहे। सिंध जी अवाम खे पंहिंजे सियासी, इंतिज़ामी ऐं वसीलनि बाबति हक़नि ते ख़दशा आहिनि, जिन खे नज़रअंदाज़ करणु बदिरां क़ौमी सतह ते संजीदा ॻाल्हि ॿोल थियणु घुरिजे। सिंध जी वहदत बाबति को बि फ़ैसिलो सियासी नारेबाज़ी या बंदि कमरे जी ॻाल्हियुनि सां न, पर पार्लियामेंट, वसी सियासी इतफ़ाक़ राय ऐं आइनी तरीक़ेकार सां थियणु घुरिजे।
1: उन पसे मंज़र में एक जामिया कौमी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत शिद्दत से महसूस थे थी जैमें हुकूमती मुखालिफ दुर से गड समूर सूबन जो सियासी पार्टियों पार्लियामानी कुवतू आईनी माहिर शामिल होजन मकसद के एक जमायत के फायदो दियण न पर वफाक सूबन के हकन मुल्क के सियासी इस्तेहकाम बाबत गडियल उसूल तय करण हुए मुल्क के सीनियर सियासी क्यादत खास तौर से आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान मियाँ नवाज शरीफ जड़न तजुर्बेकार अगवाणन वट गाल मुफाहमत जो डिघो तजुर्बो मौजूद है सदर आसिफ अली जरदारी पांजे सियासत सफर में मुफाहमती सियासत लाए सुजाता वजन था मौजूदा सूरत हाल में भी हू मुख्तलिफ सियासी कुवतुन के एक मेज से आयण में किरदार अदा कर सकन था पाकिस्तान जो आलमी किरदार पिण अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ियल है सऊदी अरब तुर्की से वधंदड़ सहकार इलाकई मामलन में पाकिस्तान के फाल किरदार लाए जरूरी है मुल्क अंदर सियासी निज़ाम एतमाद तसलसल आईनी उसूल से कायम हो मुसलसल सियासी चिकताण सूबाई वहदतुन बाबत गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क की मजमूई तासुर के मुतासर कर सके थी सिंध समेत समूरन सूबन के उहो भी यकीन दियारण जरूरी है संदन आईनी हैसियत वसीलन सियासी हकन बाबत फैसला के बंद कमरे में न थींदा जैसे मुस्तकबिल में इंतजामी यूनिटन बाबत का तजवीज़ सामू अचे थी तो उन वसी सियासी इतफाक राय अवामी रजामंदी आईनी घुर्जन तहत ही गौर करण घुर्जे पाकिस्तान के नई सियासी महाज आराई का मुफाहमत आईनी तसलसल इदारन की मजबूती की जरूरत है सिंध जो आदतू मुल्क की कमजोरी न पर पाकिस्तान के वफाकी ताकत जो हिस्सो आन सिंध के मजबूत करण उन आईनी हकन के तहफुज करण ही वफाक के मजबूत करण जो रस्तो है इन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दींदा इजाजत अल्लाह निगहबान।
2: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8
4: आप सुन रहे हैं GFM नेटवर्क पर यौम ए दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम। जो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।

आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

0: दुश्मन के लिए तबाही। पाक फौज का हर सिपाही 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम। सिंध के माथे का झूमर,
1: DFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा सिंध हिक रहंदी को भी हिस्सो धार या वफाक हवाले न थींदो सिंधी असेंबली मां नवन सूबन ऐं यूनिटनि ख़िलाफ़ ठहिरा मंज़ूर मुतहदा जो वॉकआउट सिंध में स्ट्रीट क्राइम रोकण लाइ हिकमत अमली तयारु एस एस पी खां आदि रुहारियुनि जो रिकॉर्ड तलब सिंध में रबीअ जी मुंद दौरान आबादगारनि खे डी ए पी भाण ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो पीपल्स पार्टी जो 12 सेप्टेंबर ते सॼे सिंध में सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो ऐलान मेरठ जी लताड़ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़नि ख़िलाफ़ धमकियूं सूमर ते हर हाल में मार्च थींदो अॻवाण स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध जी वहदत वफ़ाक़ जी मज़बूती ऐं क़ौमी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जी ज़रूरत आहे

0: सिंधी असेंबली सिंध जे मौजूदा इलाइक़नि सरज़मीन तालकनि ज़िलनि ऐं डिवीज़ननि खे सिंध जो अणटड़ हिसो करार ॾिंदे सिंध जी वहदानियत जे कंहिं बि क़िस्म जे विरहाङे खे मुकमल रद्द कंदे वादे कयो आहे त सिंध खे विरहाइण उन जूं मौजूदा इलाइक़ाई हदूं तब्दील करणी आहे। सिंध जी सरज़मीन मां को नओं सूबो क़ाइमु करण लाइ पेश कयल हर तजवीज़ मनसूबे स्कीम या आइनी बंदोबस्त खे उन जो नालो या नोयत कुझु बि हुजे ऐवान उन्हनि खे रद्द करे थो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कड़ो पारां पेश कयल ठहरा अक्सर ते राय सां मंज़ूर मुतहदा मेंबर बाइकाट करे हलिया विया। उन हवाले सां काल्ह सिंध असेंबली जे इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह जे सदारत हेठि शुरू थियो। इजलास दौरान अल्तवा वारी रिथ ते बहस दौरान ख़िताब कंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध असेंबली सूबे जी विरासत ऐं नवनि सूबनि या इंतज़ामी इकाइनि जे क़याम जूं सभई ॿाहिरियूं कोशिशूं गॾियल तौर ते रद्द कंदी। हिकु तारीख़ी ठहराउ मंज़ूरु कयो आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध जे जाग्राफियाई हदुनि ऐं कंहिं बि क़िस्म जी फेरफार या टुकड़ा करणु कंहिं बि सूरत में क़बूल जोॻो अमल न आहे। हुन चयो त पाकिस्तान ठाहिण जे सूबो सिंध जो हथ सभ खां मथे हुयो। सिंध सभ खां अॻु 1938 में क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जनाह जे सदारत हेठि कराची जे जलसे में उहो ठहरा पास कयो, जेको 23 मार्च 1940 जे लाहौर वारे पाकिस्तान जे ठहरा जो बुनियादु बणियो। हुन ॾुख जो इज़हार कयो त बार बार पाकिस्तान खे बचाईंदड़ सूबे सिंध ते ई इल्ज़ाम तराशी कई वेंदी आहे। हुन क़ौमी असेंबली खे ख़बरदार कयो त आइन जे तहत को बि सिंध जा टुकड़ा करण जी ॻाल्हि बि नथो करे सघे। आई जी सिंध जावेद आलम मोड़ो जे सदारत हेठि सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सूबे अंदर अमन अमान जे मजमूई सूरत हाल ऐं ॾोहनि ख़ासि तौर ते स्ट्रीट क्राइम जी रोकथाम बाबति आला सतह ते इजलास थियो। एडिशनल आई जी कराची आज़ाद खान शहर में अमन अमान ऐं ॾोहनि ख़ासि तौर ते स्ट्रीट क्राइम जी मजमूई सूरत हाल बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी। आज़ाद खान चयो त स्ट्रीट क्राइम में मुलविस ग्रोहनि ऐं उन्हनि जे सहूलतकारनि ख़िलाफ़ टारगेटेड कार्रवाइयूं जारी आहिनि, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ ॾोहनि में मुलविस आदि जवाबदारनि जी डेटा गॾु करे उन्हनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ मरबूत हिकमत अमली अख़्तियार कई वई आहे। आई जी सिंध जावेद आलम ओढ़ो समूरनि ज़िलनि खे स्ट्रीट क्राइम जे रोकथाम जे लाइ कार्रवाइयुनि खे वधीक तेज़ ऐं असराइतो बनाइण जी हिदायत कई। हुन चोरी थियल मोटरसाइकिल फोन ख़रीद कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई यकीनी बनाइण ऐं समूरे ज़िलनि में पुलिस ट्रोलिंग पिकेटिंग ऐं स्नैप चेकिंग खे वधीक असराइतो बनाइण जूं हिदायतूं जारी कयूं। आई जी सिंध स्पेशल ब्रांच खे पुलिस पेट्रोलिंग ऐं सिक्योरिटी कदमनि बाबति आफ़िसरनि खे बरवक़्त आगाह रखण जी हिदायत कई। जावेद आलम ओढ़ो समूरनि ज़िलनि खे आदि ॾोहारियुनि घुर्बल ऐं इश्तिहारी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयुनि खे वधीक तेज़ ऐं असराइतो बनाइण जी हिदायत कई। हुन चयो त ड्यूटीअ में गिफ़रत ऐं कोताही कंदड़ आफ़िसरनि ऐं अहलकारनि ख़िलाफ़ सख़्तु खाते वारी कार्रवाई कई वञे। आई जी सिंध शहरनि जे दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते AVLC जी निगरानीअ में रहनुमाई हेठि आफ़िसरनि ऐं अहलकारनि खे मुक़ररु करण जी हिदायत कई। आई जी सिंध समूरनि DIGs खे पंहिंजे लाॻापियल SSPs सां अमन अमान ऐं ॾोहनि जी रोकथाम बाबति बाक़ाइदगीअ सां इजलास मुनक़िद करण जी पिणु हिदायत कई। इजलास में एडिशनल IG कराची आज़ाद खान, एडिशनल IG CTD, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, DIG हेडक्वार्टर्स, DIG एस्टेब्लिशमेंट ऐं स्पेशल ब्रांच, AIG ऑपरेशंस, SSP AVLC, SSP SIU, SSP कियामाड़ी ऐं SSP DIT शिरकत कई, जॾहिं त ज़ोनल ऐं डिवीज़नल DIGs ऐं ज़िले SSPs वीडियो लिंक ज़रिए इजलास में शरीक थिया। सिंध हुकूमत पारां रबीअ जी मुंद साल 2026-27 दौरान आबादारनि खे DAP भाण ते सब्सिडी ॾियण बाबति तजवीज़ुनि ते ग़ौर जारी करे छॾियो। उन हवाले सां सिंध काबीना जे ज़राअत बाबति क़ाइमु ज़ेली कमेटी जो इजलास ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर जे सदारत हेठि थियो, जंहिं में आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो ऐं सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर ॻाल्हाईंदे चयो त आबादकारनि खे रिलीफ़ फ़राहम करण लाइ मुख़्तलिफ़ तजवीज़ूं ऑप्शन्स जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। ज़ेली कमेटी जे मेंबरनि खां DAP सब्सिडीअ बाबति वधीक तजवीज़ू पिणु तलब कयूं वियूं आहिनि। हुन चयो त DAP सब्सिडी जे मामले ते ज़ेली कमेटी जा वधीक हिकु या ॿ इजलास पिणु मुनक़िद कया वेंदा। आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त ईंदड़ इजलासनि में मेंबरनि जी तजवीज़ ऐं सिफ़ारिश खां हतमी शिकिल ॾिनी वेंदी, जॾहिं त ज़ेली कमेटी जूं हतमी सिफ़ारिशूं वधीक इजलास खां पोइ मंज़ूरीअ लाइ सिंध काबीना आॾो पेश कयूं वेंदियूं। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा चयो त आबादकारनि खां वध रिलीफ़ फ़राहम करणु सिंध हुकूमत जी तरजीह आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधी असेंबली में सिंध के विराग के खिलाफ ठहराव मंजूर थियण बावजूद वफाकी वजीर तरफा नवन सूबन इंतजामी यूनिटन निज़ाम बाबत दिनल बयान की सख्त लफ्जन में मजम्मत कदे अड़न बयान के वफाक तरफा सूबे के आइनी हैसियत में मुदाखलत करार दिनों है। पीपल्स पार्टी वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतालबो किया है तो वफाकी वजीर के बयान जो नोटिस वी अड़ी बयानबाजी बंद कराई वे। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खबरदार किया है जैसे वफाकी हुकूमत आइन में तरमीम करना चाहे थी तो वफाक वट पार्लियामेंट में ब भांगे टे अक्सरियत मौजूद ना है। तंहिं करे जमहूरियत जी तसलसुल खे कमज़ोर न कयो वञे ऐं मुल्क जी सालमियत सां खेॾण जी कोशिश न कई वञे। पीपल्स पार्टी चयो त पार्टी मुल्क में जमहूरियत जे तसलसुल चाहे थी पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणण न ॾींदी। तंहिं करे सूबनि जे आइनी हैसियत में मुदाख़लत बंदि कई वञे। उहो मुतालबो छंछरु ॾींहुं पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खेड़े जे सदारत हेठि थियल इजलास में कयो वियो। इजलास में सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, पीपल्स पार्टी जा समूरा डिवीज़नल सदर जिनवी ज़ियालो सलंजार, जाम इकरामल्ला ऐं ॿिया शामिल हुआ। समूरनि ज़िले सदरनि ऐं मातहत विंग्स जी सूबाई सदरनि शिरकत कई। इजलास में सिंध असेंबली जे ठहराउ खां पोइ वफ़ाकी वज़ीरनि जे बयाननि ऐं सिंध जी सियासी सूरत हाल जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में चयो त पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत जो तसलसुल चाहे थी पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणण न ॾींदी। इजलास में ईंदड़ हफ़्ते 12 सेप्टेम्बर ते सिंध जे समूरनि तालके हेडक्वार्टर्स में सिंध असेंबली तरफ़ां पीपल्स पार्टी जे कोशिशुनि सां सिंध जे विरहाङे जे ख़िलाफ़ क़रारदाद मंज़ूर करण ते भेटा पेश करण ऐं सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शंस कमेटी जे एहतजाजी कैंप काल्ह 43 ॾींहं बि जारी रही। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटीअ जी कन्वेनर शागिर्द अॻवान रबीउल्ला मस्तोई एहतजाजी कैंप ते साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मेरिट जी लताड़ ऐं करप्शन ख़िलाफ़ नसीब नगर चौक खां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हेड ऑफिस साम्हूं कैंप ताईं रैली ऐं शम्सुल उलमा दाऊद पुटो लाइब्रेरीअ खां मेरिट जो जनाज़ो कढण खां पोइ हाणे 7 सेप्टेम्बर ते सिंध यूनिवर्सिटी खां प्रेस क्लब जाम शुरू ताईं रैली कढी वेंदी। हुन चयो त मूंखे मक़सद तां हटाइण लाइ धमकियूं मिलियूं रहियूं आहिनि ऐं घणनि ई माण्हुनि खे मुंहिंजे पोयां बि पछो वियो आहे। हुन चयो त पंहिंजनि मुतालबनि खां पोइ हिते न हटंदासीं। हिकु महीने खां वधीक अरसो गुज़री वियो आहे जिदोजहद मेरिट इंसाफ़ ऐं सिंध जे शागिर्दनि जे हक़नि लाइ जारी रहंदी। असां सिंध जे हर शागिर्द जी आवाज़ जी हैसियत सां जिदोजहद जे मैदान ते बीठा आहियूं। अल्टीमेटम खां पोइ ईंदड़ एहतजाजी तहरीक जो तरीक़ो हालतुनि मुताबिक़ तय कयो वेंदो। CM हाउस बाईपास कराची या प्रेस क्लब हुजे, असां पंहिंजे आवाज़ खे हर लाॻापियल फोरम ते खणी वेंदासीं। जुमे ॾींहुं सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे एहतजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि जे वफ़द अची शागिर्दनि सां यकजहत जो इज़हार कयो। स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे अॻवाननि वजाहत हिंगोर जो, फ़ख्र ज़मां खुहारो, सिकी लधो चांडियो, हिमायत कंदड़ धुरनि जो थोरा मञा। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल अहिड़े मरहले में दाख़िल थी चुकी आहे जिते सियासी इख़्तिलाफ़नि खे जमहूरियत जो हिसो सम्झंदे बि वफ़ाक़ी ढांचे, सूबाई वहदतुनि ऐं पार्लियामानी निज़ाम बाबति वधंदड़ बहस खे संजीदगीअ साम्हूं ॾियणो ज़रूरी आहे। ख़ासि तौर ते सूबनि जी विरासत बाबति बहस जेकॾहिं सियासी एजेंडा जो हिसो बणिजी वञे त उन जा असर रुॻो हिकु सूबे ते महदूद न रहंदा। अहिड़ी सूरत हाल में सियासी कुवतुनि खे रदे अमल बदिरां ॻाल्हियुनि ऐं आइनी रस्ते खे तरजीह ॾियणु घुरिजे। बलोचिस्तान जी सूरत हाल खां पोइ सिंध में सूबाई विरासत बाबति बहस ॿीहर क़ौमी सियासत जो अहम मौज़ू बणिजी रहियो आहे। सिंध लाइ सभ खां अहम ॻाल्हि उहा आहे त इंतिज़ामी सहूलियतुनि, वसीलनि जे मुनसफ़ाणे विर्छ ऐं अवामी मसइलनि जे हल बाबति जाइज़ सवालनि खे सिंध जे तारीख़ी, सकाफ़ती, सियासती ऐं आइनी हैसियत खे कमज़ोर करण वारी सोच खां अलॻि रखियो वञे। इंतज़ामी सुधारा हिकु अलॻि मामिलो आहे जॾहिं त कंहिं सूबे जी वहदत ऐं आइनी हैसियत खे मुतासिर करणु ॿी ॻाल्हि आहे। सिंध पाकिस्तान जो वफ़ाक जे अहम वहदतुनि मां हिकु आहे। सिंध जी अवाम खे पंहिंजे सियासी, इंतज़ामी ऐं वसीलनि बाबति हक़नि ते ख़दशा आहिनि जिन खे नज़रअंदाज़ करण बदिरां क़ौमी सतह ते संजीदा ॻाल्हि ॿोल थियणु घुरिजे। सिंध जी वहदत बाबति को बि फ़ैसिलो सियासी नारेबाज़ी या बंदि कमरे जी ॻाल्हियुनि सां न पर पार्लियामेंट, वसी सियासी इतफ़ाक़ राय ऐं आइनी तरीक़ेकार सां थियणु घुरिजे।
1: उन पसे मंज़र में एक जामिया कौमी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत शिद्दत से महसूस थे थी जैमें हुकूमती ए मुखालिफ़ धुर से गड समूरन सूबन जूं सियासी पार्टियों पार्लियामानी कुवतूँ आइनी माहिर शामिल हुजन मकसद के एक जमायत के फ़ायदो दियण न पर वफाक सूबन के हकन ए मुल्क के सियासी इस्तेहकाम बाबत गडियल उसूल तय करण हुए मुल्क के सीनियर सियासी क्यादत खास तौर पर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान मियाँ नवाज शरीफ जड़न तजुर्बेकार अगवाणन वट गाल मुफाहमत जो डिघो तजुर्बो मौजूद है सदर आसिफ अली जरदारी पांजे सियासत सफर में मुफाहमती सियासत लाए सुता वन था मौजूदा सूरत हाल में भी मुख्तलिफ़ सियासी कुवतुन के एक मेज से आयण में किरदार अदा कर सकन था पाकिस्तान जो आलमी किरदार पिण अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ियल है सऊदी अरब ए तुर्की से वधंदड़ सहकार इलाकई मामलन में पाकिस्तान के फाल किरदार लाए जरूरी है त मुल्क अंदर सियासी निज़ाम एतमाद तसलसल आइनी उसूलन से कायम हो मुसलसल सियासी चिकताण सूबाई वहदतुन बाबत गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क की मजमूई तासुर के मुतासर कर सके थी सिंध समेत समूरन सूबन के उहो भी यकीन दियारण जरूरी है त सदन आइनी हैसियत वसीलन सियासी हकन बाबत फैसला के बंद कमरे में न थींदा जैकड़े मुस्तकबिल में इंतजामी यूनिटन बाबत का तजवीज़ सामू अचे थी त उन ते वसी सियासी इतफाक़ राय अवामी रजामंदी आइनी घुर्जुन तहती गौर करण घुर्जे पाकिस्तान के नई सियासी महाज आराई खां वधीक मुफाहमत आइनी तसलसल इदारन की मजबूती की जरूरत है सिंध जो वहदतू मुल्क की कमजोरी न पर पाकिस्तान के वफाकी ताकत जो हिस्सो आन सिंध के मजबूत करण उन आइनी हकन के तहफुज करण ही वफाक के मजबूत करण जो रस्तो है इन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिंदा इजाजत अल्लाह निगहबान
2: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8
4: सुन रहे हैं GFM नेटवर्क पर योम दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।